0: सुनने वालों, हम सब दोबारा आ गए हैं सुंदर से गीत सुनकर के, और श्रीमान क्रिश जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये कार्यक्रम को हम कोशिश कर रहे हैं नई दलांस में आज रखने के लिए, ताकि हमें संदेश में जो संदेश मिल रहा है, जैसे कि किसी को और सफ़र करना है, जो अभी मन में सफ़र करने का है पर मन में कुछ संकोचते हैं, तो ज़रूर ऐसा व्यक्ति से मिलिए, ऐसा स्थान पर जाइए जो हॉलैंड में ऑर्गेनाइजर होता है द ग्लोब थ्रोटर, जो द ग्लोब थ्रोटर दैट वर्ड इन ग्रोनिंगन georganiseerd है, मैंने क्रिस।
1: या het is wel eens op andere plekken, maar grotendeels in Groningen, ja, op een camping.

जिंदगी छोटी नहीं होते हैं, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। आज का संदेश में जो विषय रखा गया सफर, श्रीमान क्रिस दफरिस जी ने अपना संदेश हम सब के लिए रखे, हम उन्हें बहुत धन्यवाद देते हैं। मनेर क्रिस दफरिस, यू वर्ट हेल हेल हार्टलिक बदांत दैट यू हैव मेगदान अन ऑनस प्रोग्रामा। हमारे कोलेगा साथी शांता खेमाई जी जो हमारे साथ दिए, मैं हूं आपका सेवक संजय और यही आशा रखता हूं कि लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेगा तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। आप सभी को एक शुभ दिवस। नमस्कार।

सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूं। एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूं संजय। क्योंकि पुलिंग स्त्रीलिंग में तो कभी गलती भी हो जाता है, विश यू अ वेरी गुड डे।

अगर आपका दिन एक शुभ दिन हो, यही आशा लेकर हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ जुड़ गए हैं।

धुरंधर फिल्म से निकाला गया कि दिल ही ना माने ये, और कहते हैं कि ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह है, ज्यादा अच्छा ही होना भी गुनाह है, पता नहीं चलता लोग इज्जत

कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों एक और सुंदर सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे और इसी प्रकार से नए नए न्यू सॉन्ग्स के ओर हम आज बढ़ चले हैं। देखते हैं क्या और नया गीत हमारे लिए है।

चुनरी चुनरी, ये सुंदर सा गीत जो कि एक न्यू यश में रखा गया। और दोस्तों सुनने वालों, भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देते हैं, तो बस इस पे थोड़ा से ध्यान देना। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और सुंदर दिवस आपको रहे। Een hele vreugdige en gelukkige dag toegewenst.

स्टूडियो में तो थोड़ा बटन ज्यादा लेफ्ट की ओर घुमा दिया था या राइट की ओर पता नहीं, पर लाल जल रहा था। आप अपना रेडियो का बटन किस ओर घुमा रहे हैं, बस ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ।

सुंदर संगीत जो निकाला गया एक फिल्म जो 2025 में रिलीज हुआ। कहते हैं कि जिंदगी बहुत आसान हो जाता है, जिंदगी बहुत आसान हो जाता है जब परखने वाले नहीं समझने वाला मिल जाते हैं। एक और नया सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे सुनने वालों, और आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ। मौसम पता नहीं कैसे है, गर्मी है या सर्दी है, पर जरूर अपना चलने का व्यवस्था आज का भूलना नहीं, क्योंकि कहा गया है कि रोज हमें कम से कम 6 दर्शन स्थापन तो करना ही है, तो उस पे जरूर ध्यान देना। और यहाँ से फाहुन से हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे।

0: वेलकम टू द जंगल, ये फिल्म जो 2026 में है और इसमें से ये निकाला गया ये सुंदर सा गीत जो भोजपुरी में गाया गया है। और कहते हैं कि कुछ पंजाबी गीतों जो फिल्मों में चलाया जाता है आजकल, देखो भोजपुरी भी खूब जोर तोर से सहयोग दे रहा है बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री में। भोजपुरी जो सुरिनामी हमारे सुरिनाम भाषा से ज्यादा मिलते जुलते है।
1: के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं है।

वापस आऊंगा। कहते हैं दोस्तों सुनने वालों की देखकर दूसरों की आनंदित होना स्वस्थ मन की पहचान है। देखकर दूसरों की आनंदित होना भी स्वस्थ मन की पहचान है। ये सुंदर सा संदेश रखने वाले ईश्वर सिंह जो भारत से हमारे लिए ये मैसेज को भेजा और आपके तक पहुंचा दिया गया।

एक फिल्म जिसमें आयुष्मान और भूमि जी ने अपना कला सा प्रदर्शन दिए। दोस्तों कहते भी कि समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता है। एक और सुंदर सा गीत को मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए है।

ग्रेट सॉन्ग हल्लो, जिसमें काम किए रामचरण, बुच्ची बाबू, श्रुति हसन और जानवी कपूर ने। तो ये बात कहा जाता है कि समय और बचपन दोनों ही यादों में सबसे सुंदर लगते हैं। तो क्यों ना हम एक और सुंदर सा सॉन्ग की ओर बढ़ते हैं।

आर्यन खान और राशमिका मधाना अपना कला से प्रदर्शन दिया। ये सुंदर सा गीत जो निकाला गया न्यू सॉन्ग 2026 रोमांटिक सॉन्ग जो कि निकाला गया दिल पे तेरा नाम। दोस्तों सुनने वालों, हम इसी तरह से और भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। और भारत मोहन गार्डन से भाई ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है कि दुनिया में दो ही पौधा दुनिया में दो ही पौधे ऐसा है जो कभी मुरझाते नहीं। पहला जो निस्वार्थ प्रेम से और रहे, और दूसरा जो अटूट विश्वास।

तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर ने ये फिल्म में काम किए। दोस्तों सुनने वालों, मैं आपके साथ कुछ समय तक और व्यतीत करूंगा। एक और सुंदर सा गीत मैंने प्लेयर पर ट्यून करके रखे हुए है, क्यों ना उस ओर बढ़ते हैं कि मुझको तुमसे प्यार हुआ।

इमरान हाशमी ने फिल्म में काम किए। दोस्तों, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है, 2400 घंटा आपके साथ, जो हम सब जुड़े रहते हैं, हमारे सभी कोलेखा साथी अपने अपने समय पे और यहाँ उपस्थित होकर के कार्यक्रम को रखते हैं। किसी ने मेरे पास ये संदेश को भेजा है कि हद से ज़्यादा सीधा सादा होना भी ठीक नहीं है, हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। तो आप खुद समझदार हो, समझ जाना क्या संदेश देना चाहते हैं। जो व्यक्ति ने हमें हमारे पास ये संदेश को भेजा है, एम फी नाम है उनका, हम एक और सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे।

सुनो लो, मैं हूँ आपका सेवक संजय। कुछ समय तक मैं आपके साथ व्यतीत रहेंगे। कुछ पुराने गाने और कुछ नए गाने के साथ ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जो दुनिया के हर एक प्रांत में इंटरनेट द्वारा आप सुन सकते हैं। हमारी हिंदुस्तानी की आवाज़।

कहते भी है कि जिसका उदय होना निश्रित है उसके लिए प्रकृति भी रास्ता बना देती है।

आज एक ऐसा दिन बनाइए कि कोई आपकी वजह से, कोई आपकी वजह से मुस्कुराए, ऐसा

ये किनारा ही के खोज में हम सभी लगे हुए हैं। पर किनारा कैसे हम पहुंचेंगे, पहले तो हम नाव में दोनों पांव अपने रखे। क्योंकि हम सभी भगवान को पाना चाहते हो, पर पकड़े हुए अभिमान से लाचार है। और ये भी संदेश प्रदीप जी ने भेजे है उत्तम नगर से। प्रदीप जी के ये संदेश है, भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, इसे तो रोज रोज स्वयं ही लिखना पड़ता है।

जी भी एक और संदेश को और भेजे हैं, जिसमें लिखा गया है कि सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये हमारा भ्रम है। जैसे कहा गया है कि सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये हमारा भ्रम है। हकीकत ये है कि मन को प्रसन्न रखने सब दुख दूर हो जाएगा।

आवाज में ये सुंदर सा गीत हम सब सुने, जिस पर सुनील जी भी ये संदेश भी हमारे लिए भेज दिया कि मुस्कुराने के वजह ना ढूंढो, मुस्कुराने के वजह ना ढूंढो, वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी, कभी बेवजह भी मुस्कुरा के देखो, आपके साथ साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी।

सुनाल इस पर ईश्वर जी भी हमारे लिए एक संदेश भेजा और भाई ईश्वर आपके संदेश कोशिश करेंगे रखने के लिए। संदेश जो ऐसा है कि सब कुछ जिंदगी में नहीं मिलता, कुछ चीजें मुस्कुराते हुए छोड़ देना चाहिए। ये संदेश जो ईश्वर जी हमारे लिए भेजे

और सुनने वालों, भाई ईश्वर जी का दूसरा संदेश ये है सत्य की भूख सबको है, लेकिन सत्य जब परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है।

बिल्कुल सच कहे भाई ईश्वर ने। संदेश जो कि सत्य की भूख सबको है, हम सभी सच्चाई सुनने को इच्छा करते हैं। और भाई ईश्वर कहते हैं कि सत्य की भूख सबको है, लेकिन सत्य जब परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है।

देखते हैं कि जिंदगी में जब बचपन के खेल खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर किस्मत के खेल शुरू हो जाता है।

सुनने वालों, किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है कि बहुत जरूरी है कि जिंदगी में थोड़ा खालीपन भी रखे, क्योंकि यही वो समय है जहां हमारी मुलाकात खुद से होती है।

आप सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो और संदेश जो ईश्वर जी के ओर से जो भारत मोहन गार्डन से जुड़े हुए और हमारे पास संदेश को भेजते रहते हैं, तो ईश्वर जी के ओर से एक और संदेश है, वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते हैं, बस सही साबित होने में वक्त लग जाते हैं।

अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। क्योंकि कहते हैं कि अच्छे इंसान अच्छे समय ला सकता है, लेकिन अच्छे समान अच्छे इंसान नहीं ला सकता है।

दोस्तों, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है। और ये भी आप जानते हैं कि बुद्धिमान वो नहीं होता है जो केवल बोलना जानता है, बुद्धिमान वो नहीं होता है जो केवल बोलना जानता है। असली बुद्धिमान तो वो है जिसे पता है कहाँ चुप रहना है।

रब ने बना दी जोड़ी। रूप कुमार की आवाज में ये सुंदर सा गीत हम सब सुने। कहा जाता है कि नजरों में सम्मान और बोलने में मर्यादा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है।

वाह क्या सुंदर संदेश। कहते हैं कि नमक जैसे हो गई है जिंदगी, नमक जैसे हो गई है जिंदगी, अपने ही लोग हमें स्वाद अनुसार इस्तेमाल करने लगे। क्या खूब संदेश भेजा भाई ईश्वर ने कि नमक जैसे हो गई है जिंदगी, अपने ही लोग हमें स्वाद अनुसार इस्तेमाल करने लगे हैं।

कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी गलतियों का वकील और दूसरों के गलतियों का जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासला होने लगता है।

कलम कबीर सिंह ये गीत जो गाए हैं अरिजीत सिंह, उनके आवाज़ में ये सुंदर सा गीत को हम सब सुने।

0: कुछ संदेश भी था। ज्यादा लगाव रखना है तो अपना करियर से रखे, क्योंकि इंसान धोखा दे सकता है मगर अपना करियर जो है ना आपका हमेशा साथ देता है। सुनने वालों, यहां तक हमारे हिस्से के कार्यक्रम। आशा रखता हूं कि कुछ न कुछ नए गीत और कुछ पुराने गीतों के साथ कार्यक्रम को बनाया गया। सभी को एक शुभ दिवस, नमस्कार। मैं आपका सेवक संजय और आपसे विदा लेते हैं, और किसी ने अच्छे कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे।
1: माँ दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी इस भजन द्वारा आगे सुने।

भाई बहनों, यदि हम एक सरल विचार याद रखें तो जीवन अधिक खुशहाल और तनाव मुक्त हो सकता है। हमें वह सब नहीं मिल सकता जो हम चाहते हैं, लेकिन हमें वो सब मिलेंगे जो हमने कमाए हैं। इस पर हम क्यों न विश्वास करें और बिल्कुल नए और अनुचित तरीके से दूसरों से लेने की राह पर हैं, जहां दूसरों को दुख और पीड़ा महसूस होती है। मित्रों, ये याद रखें कि जो आपने बोया है फिर फसल भी तुम्हें ही काटनी पड़ेगी, और ये बात याद सब पर लागू होती है। मित्रों, सब पर लागू होती है, आप पर, मुझ पर भी।

दोस्तों, आज आप हारी रहें और जाने कि आप कितने अमीर हैं। आपका अपना परिवार है और दोस्त अमूल्य हैं। आपका समय सोने की बराबर है और आपका स्वास्थ्य यानी खजौंथ है आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है यानी रैगम है।

प्रिय आत्माओं, सबसे खूबसूरत दिन वो आता है जब आप जागते हैं और फिर सोचते हैं कि जीवन अभी भी आपकी दुनिया है। ऐसे लोगों द्वारा रंगा जाता है जो वास्तव में आपकी परवाह करते हैं और आपको कभी नहीं भूलते हैं, और आप इसका अनुभव केवल तभी कर सकते हैं जब आप वास्तव में दूसरों के प्रति मधुर और दयालु हो। तुम लाभ उठाओ इसलिए बिना किसी अभिमान और अहंकार के अपना मुंह हमेशा बंद रखो। मित्रों, हमेशा बंद रखो, बेकार के मत बोला करो।

दोस्तों, कभी कभी जो आपके रास्ते में बाधा बनकर आता है वो वास्तव में एक उपहार होता है जो आपको एक अलग दिशा में ले जाता है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि आपको बेहतरी के लिए अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। और यदि कोई ऐसा नहीं करना चाहता है मित्रों, या नहीं करता है, तो वे बाधाएं उनके जीवन में एक समस्या बन जाती है, एक प्रॉब्लम बन जाती है मित्रों।

वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्वकार्यषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः माता पिता चरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सुनने वालों सभी को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए मैं संजय जो आपके साथ जुड़ गए हैं कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करूंगा और कुछ सुंदर सुंदर भजनों के साथ।

जो बीमार है भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आवे। जिसके घर पे एक नया शिशु ने जन्म लिया है उन्हें बहुत सा बधाई दिया जाता है। जिनका आज सालगिरह है उन्हें बहुत सा हैप्पी बर्थडे। जो अपने तैयारी कर रहे हैं कुछ शिक्षा दीक्षा लेने और देने को, तो उनको भी माता सरस्वती को ओर से शुभकामनाएं प्रस्तुत है। जो अपना तैयारी कर रहे हैं नौकरी के ओर, तो उनको ओर से ये कहना चाहूंगा, हर बार की तरह की गांधी जी को भूलना नहीं। ये मत सोचना कि हमारा देश हमारे लिए क्या कर सकते हैं, ये सोच कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। अगर ये सोच जा आपको रहेंगे तो ये, अगर मैं आपसे ज्यादा ना कह दूं तो ये जरूर स्पर्श है कि आप अपना समय पे पेंशन को प्राप्त कर सकेंगे।

सुनो लो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सुंदर सा दोहा हम सबके लिए लिख गए हैं।

तुलसीदास कह गए हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्ख तुलसी एक समान। कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्ख तुलसी एक समान।

इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ यही है कि जब तक मनुष्य के मन में काम, क्रोध, अहंकार और लालच भरे हुए है, तब तक एक ज्ञानी पंडित और एक मूर्ख में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों समान होते हैं।

सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूँ और एक सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे।

स्वस्ति माहौल के आवास में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है और हमारे सभी कर्मचारियों जो हमारे सभी कोलेगास होते हैं उनके ओर से एक सुंदर सा भजन के ओर बढ़ेंगे। भजन का बोल दो तीन है जिंदगी।

आई जगत में काई करो, यानी कहने के तात्पर्य यह है, हम जगत में आए हैं तो कुछ ऐसा काम करके जाए जिसे हमें कोई बाद में कुछ बातचीत करके, ऐसा ना हो कि हमारा जो कर्म किए हमने वो कर्म ऐसा है जिसके बारे में लोग नेगेटिव बात करते रहे। दोस्तों सुन लो वालों, बातचीत, बातचीत ये दो शब्द ही है, पर की जाए तो दिलों को कई मैल धुल जाते हैं। एक सुंदर सा भजन और हम चलाने वाले हैं जो हमारे स्टूडियो यानी फाउन रेडियो का सभी कोलेखास की ओर से।

स्वस्ति मिश्रा के आवाज में ये सुंदर सा भजन कि तेरी शुक्रिया है सुबह की पहली प्रणाम कि हे ईश्वर आपकी कृपा से एक नया सुबह देखने का सौभाग्य मिला है। आपकी आभार हूँ मेरे सभी मित्रों और सभी संबंधियों, सुखी रहे, स्वस्थ रहे और दीर्घ आयु को प्राप्त करे। अगला भजन की ओर हम बढ़ने वाले हैं सुनने वालों, और ये भजन भी सभी कोलेगास हमारे डायरेक्टर कुमार घिराव जी के ओर से, जॉनी सुरजबाली जी के ओर से, शांता खेमाई, रजेश बदलू, राजन द्वारका, प्रदीप फेराई, विजंती नाथू, रोसिता गिरजा सिंह, सुरेन भगवान दीन, बबली आसरा, रोमियो हाउस, संजय भगवंत, गंगा चंद्र जी और यूसुफ सीतू, बीबी साहिबा, रहीम बख्स जी, श्याम पूरन, अनुराधा चंद्र जी और राजेंद्र सिंह हैन और अनिल सरजुग जी के ओर से ये सुंदर सा भजन।

जब कुछ समझ में ना आए तो सीताराम गाइए, और यही संदेश, जो सुंदर सा संदेश हमारे फाहुन का सभी कोलेगास की ओर से रखा गया, और एक मैसेज जो उत्तम नगर भारत से आया है, ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है, और संदेश ये है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। तो ये सुंदर सा संदेश भाई ईश्वर जी जो उत्तम नगर भारत से और ये संदेश को भेजे है, एक बार और उसे दोहरा दिया जाता है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। एक और सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे सुनने वालों।

होगा वही जो राम ने लिखा है। ये सुंदर सा भजन हम सब सुने अजय तिवारी के आवाज में। सुन वालो, हमारे पास मोहन गार्डन भारत से भी एक और मैसेज आए है कि गुजरी हुई जिंदगी को तू कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा होगा उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। ये सुंदर सा मैसेज श्रीमती सुनील जी जो मोहन गार्डन से भेजे है। बहुत खुशी के कार्यक्रम को अन्य और स्थानों पे भी सुना जाता है। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और एक और सुंदर सा भजन के ओर बढ़ रहे हैं।

जय किशोरी और सोनू निगम के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने जो हमारे देश में सफर करने को आए हैं। हार्दिक से स्वागत किया जाता है और कहना ये चाहूँगा कि हमारे देश में हॉलैंड में कितने मंदिरों हैं, जैसे कि देन हाग में राधे कृष्ण मंदिर, देव मंदिर जो हर रविवार को और लगाया जाता है शाम में 2 बजे से 5 बजे तक, मंगलवार को राधे कृष्ण मंदिर जो 6 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, सेवाधाम मंदिर जो देन हाग शहर में वो भी शाम को लगाया जाता है हर रविवार को, और इसी प्रकार से सुतमेर शहर में लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि हर मंगलवार को लगाया जाता है 6 बजे से 8 बजे तक। दमेरन शहर उत्तराखंड में गणेश मंदिर जो भी हर मंगलवार को 4 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है। इसी तरह से अलमेर में विष्णु मंदिर जिसे हम गोल्डन टेंपल के नाम से जानते हैं वो भी हर रविवार को 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। ऐसे भी हम लोग के देश में जो सुंदर सुंदर मंदिरों का स्थान है जहाँ पर हम सब जाकर के सत्संग आदि कर सकते हैं और कथन वहाँ हर अलग मंदिर दिन पे कथा को और जो व्यास भगवान का प्रार्थना पूजन आराधना किया जाता है संदेश को रखा जाता है। रोटरडम शहर में शिव मंदिर और शिव मंदिर अरनहेम में भी हर रविवार को जो सुबह में रोटरडम में और सुबह से 9 बजे से 12 बजे तक, और अरनहेम में जो कि 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। हम एक और भजन की ओर बढ़ेंगे, राधा रानी का चरण जो कि चित्रलेखा जी के आवाज में रखने वाले हैं।

राधा रानी के चरण प्यारी प्यारी चित्रलेखा जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। दोस्तों, हम एक और मैसेज जो प्रदीप जी जो उत्तम नगर से हमारे लिए भेजे हैं, और ये मैसेज का बोल ये है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि समय और सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव और समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। तो भाई प्रदीप जी को बहुत सा और नमन करता हूँ, और ये सुंदर सा संदेश रेडियो पर रख दिया गया। हम एक और सुंदर से भजन की ओर बढ़ेंगे। सुनने वालों, जया किशोरी जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन।

जय किशोरी जी के आवाज़ में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। मेरे श्याम तेरा नाम ही काफ़ी है मेरी हर मुस्कान के लिए। यहाँ तक जो सुबह का भजन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, मैं आपका सेवक संजय आशा यही रखता हूँ कि कुछ न कुछ आपको जरूर अच्छा लगे होंगे। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, रूह कुछ बदल दिया जाएगा। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत है।

सुनने वालों, मैं संजय आपके साथ जुड़े हुए और ये दावा के साथ कह रहा हूं कि आप चुने फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूं। एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूं संजय, क्योंकि पुलिंग स्त्रीलिंग में तो कभी गलती भी हो जाता है। विश यू अ वेरी गुड डे।

अगर आपका दिन एक शुभ दिन हो, यही आशा लेकर हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ जुड़ गए हैं।

धुरंधर फिल्म से निकाला गया कि दिल ही ना माने ये, और कहते हैं कि ज्यादा अच्छा होना भी गुना है, ज्यादा अच्छा ही होना भी गुना है, पता नहीं चलता लोग इज्जत कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक और सुंदर सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे और इसी प्रकार से नए नए न्यू सॉन्ग्स के ओर हम आज बढ़ चले हैं। देखते हैं क्या और नया गीत हमारे लिए है।

चुनरी चुनरी, ये सुंदर सा गीत जो कि एक न्यू यश में रखा गया। और दोस्तों सुनने वालों, भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देते हैं। तो बस इस पे थोड़ा से ध्यान देना। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और सुंदर दिवस आपको रहे। Een hele vreugdige en gelukkige dag toegewenst.

सुंदर सा गीत जो निकाला गया एक फिल्म जो 2025 में रिलीज हुआ। कहते हैं कि जिंदगी बहुत आसान हो जाता है, जिंदगी बहुत आसान हो जाता है जब परखने वाले नहीं समझने वाला मिल जाते हैं। एक और नया सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे सुनने वालों, और आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ। मौसम पता नहीं कैसे है, गर्मी है या सर्दी है, पर जरूर अपना चलने का व्यवस्था आज का भूलना नहीं, क्योंकि कहा गया है कि रोज हमें कम से कम 6 दर्शन स्थापन तो करना ही है, तो उस पे जरूर ध्यान देना। और यहाँ से फाहुन से हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे।

0: वेलकम टू द जंगल, ये फिल्म जो 2026 में है और इसमें से ये निकाला गया ये सुंदर सा गीत जो भोजपुरी में गाया गया है। और कहते हैं कि कुछ पंजाबी गीतों जो फिल्मों में चलाया जाता है आजकल, देखो भोजपुरी भी खूब जोर तोर से सहयोग दे रहा है बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री में। भोजपुरी जो सुरिनामी हमारे सुरिनाम भाषा से ज्यादा मिलते जुलते है।
1: अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं है।

वापस आऊंगा। कहते हैं दोस्तों सुनने वालों की देखकर दूसरों की आनंदित होना स्वस्थ मन की पहचान है। देखकर दूसरों की आनंदित होना भी स्वस्थ मन की पहचान है। ये सुंदर सा संदेश रखने वाले ईश्वर सिंह जो भारत से हमारे लिए ये मैसेज को भेजा और आपके तक पहुंचा दिया गया।

एक फिल्म जिसमें आयुष्मान और भूमि जी ने अपना कला सा प्रदर्शन दिए। दोस्तों कहते भी कि समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता है। एक और सुंदर सा गीत को मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए है।

ग्रेट सॉन्ग हल्लालो, जिसमें काम किए रामचरण, बुच्ची बाबू, श्रुति हसन और जानवी कपूर ने। तो ये बात कहा जाता है कि समय और बचपन दोनों ही यादों में सबसे सुंदर लगते हैं। तो क्यों ना हम एक और सुंदर सा सॉन्ग की ओर बढ़ते हैं।

आर्यन खान और राशमिका मधाना अपना कला से प्रदर्शन दिया। ये सुंदर सा गीत जो निकाला गया न्यू सॉन्ग 2026 रोमांटिक सॉन्ग जो कि निकाला गया दिल पे तेरा नाम। दोस्तों सुनने वालों, हम इसी तरह से और भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। और भारत मोहन गार्डन से भाई ईश्वर सिंह जी ने यह संदेश को भेजा है कि दुनिया में दो ही पौधे ऐसा है जो कभी मुरझाते नहीं। पहला जो निस्वार्थ प्रेम से और रहे, और दूसरा जो अटूट विश्वास।

और शाहिद कपूर ने ये फिल्म में काम किए। दोस्तों सुनने वालों, मैं आपके साथ कुछ समय तक और व्यतीत करूंगा। एक और सुंदर सा गीत मैंने प्लेयर पर ट्यून करके रखे हुए है, क्यों ना उस ओर बढ़ते हैं कि मुझको तुमसे प्यार हुआ।

इमरान हाशमी ने फिल्म में काम किए। दोस्तों, ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है, 2400 घंटा आपके साथ, जो हम सब जुड़े रहते हैं, हमारे सभी कोलेखा साथी अपने अपने समय पे और यहाँ उपस्थित होकर के कार्यक्रम को रखते हैं। किसी ने मेरे पास ये संदेश को भेजा है कि हद से ज़्यादा सीधा सादा होना भी ठीक नहीं है, हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। तो आप खुद समझदार हो, समझ जाना क्या संदेश देना चाहते हैं। जो व्यक्ति ने हमें हमारे पास ये संदेश को भेजा है, एम फी नाम है उनका, हम एक और सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे।

0: वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्वकार्यशु सर्वदा। रुब्ररू मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा, अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसीलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हैं, और यहाँ से जो हम सब उपस्थित हो गए हैं स्टूडियो में, तो शांता जी और कोलेखा साथी बबली जी भी, और पनेल के पीछे हमारे भाई राजेंद्र जी है, सभी अपना अपना एंट्री देते हैं। फिर उसके बाद में हम विषय जो आज का बड़े धमाकेदार है उसके ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप पहले शांता जी के सुन रहे हैं, फिर बबली जी को, फिर उसके बाद में राजेंद्र जी को।
1: रिश्ता सिर्फ वो नहीं जो गम या खुशी में साथ दे, रिश्ता सिर्फ वो नहीं जो गम में या खुशी में साथ दे, रिश्ता वो है जो अपनापन का एहसास दे। सभी का शांता के प्यार भरी राम राम प्रणाम इस ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में।
2: चुप रहना और अपने काम में लगे रहना भी एक कला है। इस संसार में जिसको भी ये आ गया, वो बिना किसी आवाज़ के बुलंदियों पर पहुंच गया। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार।
3: सबने अपना अपना शेर तो बड़ी जोर शोर से सुनाया। किसी ने चुप रहने की बात कही, किसी ने रूबरू मिलने की बात करी, शांता जी ने अपना सुनाया, लेकिन हम क्या सुनाएं। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोताओं को जो कि हम आगे सुनाएंगे, सबके लिए नमस्कार। और इसी प्रकार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो सुनते रहिए, कुछ ना कुछ आज हमारा जो विषय है कश्मीर के ऊपर है। और
0: दोस्तों, कार्यक्रम आगे बढ़ाने से पहले हम हर सप्ताह की तरह, जैसे कि जिसका मन अभी उदास है, जो अभी अभी रेडियो को ऑन किए है, और जो इस समय ये कार्यक्रम के सुनने के लिए, क्योंकि कितने लोग ये कार्यक्रम अन्य देशों में भी सुनते हैं, वहाँ शायद समय कुछ और होगा, तो सभी के लिए पहले हरिओम सरन जी ने सुंदर रूप से अपने वाणी से और जाकर के वो गीत से हम सबको और हम सब के लिए गाकर छोड़ गए हैं कि तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तो राजेंद्र जी, क्यों ना हम वो ही गीत चलाते हैं पहले, फिर आज का विषय जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंतर्गत में काफी संदेश है, पर और भी संदेश है दोस्तों, आप सुनते रहना। हम पहले वही गीत के ओर बढ़ रहे हैं जो हम सभी हर सप्ताह की तरह, तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे।

0: तो दोस्तों अभी हम सब आगे बढ़ने वाले हैं ये विषय के लेकर, पर ये विषय आज जो हमारे विशेषज्ञों है ना, तो विशेषज्ञों ने कुछ और भी संदेश रखे हुए। राजेंद्र जी, इसके बारे में आप कुछ पहले सुनाओ तो फिर हम सब जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ेंगे।
1: हाँ, जो आज का विषय है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो कश्मीर है वो एक धरती का स्वर्ग कहा जाता है।
0: धरती का स्वर्ग।
1: हाँ, और जब धरती का स्वर्ग की बात आती है तो कश्मीर में क्या नहीं होता है, अखरोट होते हैं, ड्राई फ्रूट सारे होते हैं, केसर जो वहाँ का बहुत ही फेमस और पूरी दुनिया में नंबर वन का जो केसर कहते हैं वो कश्मीर में ही होता है।
0: महाराज इंद्र जी, ये बात है कि केसर आप कह रहे हो, पर केसर बोले तो हम लोग यहाँ कैसे हम जानते हैं शांता,
1: सफरान।
0: हाँ, सफरान उसे कहते, दुनिया के वर्ल्ड सबसे ऊंचे क्वालिटी के वही,
1: सबसे ऊंची क्वालिटी का वही होता है। वहाँ के अखरोट, वहाँ का बादाम, वहाँ का नारंगी, मौसमी, सब चीज बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ऊंचाई वाला स्थान है और कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही अच्छा है, इसलिए सब चीज़ें बड़ी स्वादिष्ट वहाँ होती है। उसी कश्मीर के बारे में जब हम आज आगे की बात करेंगे कि वहाँ के राजा जो आखिरी राजा हुए,
0: बहुत अच्छा होता
1: क्योंकि राजा करण सिंह, जब राजा हरि सिंह वहाँ के महाराजा थे तो राजा करण सिंह भी ऑलरेडी, उनका राजा करण सिंह की जय बोला जाता था उस समय। इसके बाद देश स्वतंत्र हो गया और फिर सब राजे रजवाड़े सब एक उसमें आ गए, भारत में सब विलीन हो गए। इसी प्रकार का आज हमारा कार्यक्रम जो होने वाला है कश्मीर के बारे में और राजा हरि सिंह के बारे में, उस पर प्रकाश डालेंगे।
0: तो राजेंद्र जी, क्यों ना हम पहले थोड़ा से उस ओर बढ़े, क्योंकि शांता ने पिटारा भर करके और गीतों को लेकर आए हैं, और हमारे सुनने वालों भी इस बात को जब कहीं मिलते हैं तो वो कहते हैं शांता जो अपना पिटारा लेकर आते हैं, भला बताइए वो कैसा चीज़ है, वो क्या है। तो सुनने वालों, ये बात है कि जरूर एक ना एक दिन ये अवसर मिलेगा आपको शांता का पिटारा से और देखने के, और तथा यानी कि वो कहने की तात्पर्य ये है जो अपना गीतों जो शांता जी लेकर हम सबके लिए खोज खोज करके इकट्ठा करके यहाँ उपस्थित होते हैं स्टूडियो में। तो क्यों ना पहले हम एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर अभी आज ये तेईमा जो है विषय जो है जम्मू कश्मीर उस पे जरूर चर्चा किया जाएगा। पर राजेंद्र जी, हमारे सुनने वालों तथा हमारे विशेषज्ञों खास करके संदेश कुछ और भी रखे हैं, तो वो भी सुनाना पड़ेगा। पहले हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।
1: जो गीत के बोल है वो है कश्मीर की वादी में मेरी माँ का द्वारा,
0: कश्मीर के वादी में मेरी माँ का
1: द्वारा
0: द्वारा। चलो सुना देते हैं।

0: कश्मीर की वादी में शेरों वाली माँ का द्वारा है। लखबीर सिंह लखा जी ने जो भजन गाया है बहुत ही सुप्रसिद्ध एकदम, उसमें बहुत ही प्रकार से लोगों को सराहनीय हो जाता है, सबको पसंद आता है, यानी सबको पसंद आता है इस प्रकार का जो लखबीर सिंह लखा ने भजन गाया। और कश्मीर का तो होना भी चाहिए, क्योंकि स्वर्ग का जो धरती का स्वर्ग कश्मीर है, उसके बारे में तो हर किसी ने अलग अलग प्रकार से अपना बयां किया है। तो इसी विषय में हमारा कार्यक्रम कश्मीर के विषय में जो आज का रहने वाला है, होने वाला है, कश्मीर की जो 10 बातें हैं।
1: राजेंद्र जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कश्मीर के बारे में हम सब आज विशेष बातें रखने वाले हैं, पर पहले राजेंद्र जी कुछ बातें और आए हैं और उन्हें तो पहले हम सब रख दे, ताकि हमारे सुनने वालों इस बात को भूले ना और इस बात को जानना बहुत क्या कहते हैं जरूरी है। अब जैसे कि राजेंद्र जी यहाँ बताया जाता है कि फलों से सीख जो हम सबको मिलता है ना, फल से, तो फलों से जो सीख हम सबको मिलता है कि जैसे कि गुजाबा, शांता जी गुजाबा पता ना क्या?
2: गुजाबा मेरे को पता है क्या है, खुयाफा।
1: खुयाफा उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अमरूद ना,
0: तो उसको बोल अंग्रेजी में गुआवा बोलते हैं, हिंदी में अमरूद,
1: ऐसा।
0: हाँ,
1: तो फलों से सीख जो हम सबको मिलते हैं कि नमक लगाने पर भी स्वाद बढ़ जाते हैं ना उसे।
0: हाँ,
1: अब कभी कभी तरबूजा बाजार से लावो, होलांत एक देश है जहां पर तरबूजा यानी कि वाटर मेलन ना कि हर समय मिलता है। सूरीनाम एक देश है जहां पर बस खरोता फकांसी में ना मिलता है
2: गर्मी के अनुसार। हाँ,
1: और पर होलांत एक देश है जहाँ पर हर समय आपको और तरबूजा कोई भी फ्रूट कोई भी अपेगो एप्पल जैसे भाई
2: लगातार मिलते हैं।
1: हाँ, लगातार हमारे घर पे पेड़ से जो सेब एप्पल होते हैं ना, तो अगोरते हैं कि अब फूल ले लिया है, धीरे धीरे फूल से अब जब फल बन गया है और उसका तुराई जुलाई अगस्त में होता है कि हम सब उसे तोड़ पाते हैं ना। पर होलांत एक देश है यहाँ हर समय सब प्रकार के और फ्रूट मिल जाता है, पर कहने के तात्पर्य यह है नमक लगाने पर भी स्वाद बढ़ जाते हैं फलों से, फलों का ना, कच्चा आम जैसे भैल और इस प्रकार के अनेकों और फलों में नमक लगा दो
0: नहीं, जैसे नमक आम में न लगाओ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नमक अमरूद में और जामुन में काला नमक, अमरूद में काला नमक लगाने से उसका स्वाद बढ़ जाता है, और जैसे केले में भी थोड़ा सा नमक लगाने से उसको अच्छा हो जाता है। इस प्रकार आम में नमक नहीं डालो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि आम वैसे ही मीठा है, बहुत ज़्यादा मीठा है
1: आम जो फलों का राजा। पर राजेंद्र जी ये भी बात है, आम जो अंदर से यानी कि रंग उनका और क्या कहते हैं औरायों को कैसे कहते हैं,
0: ऑरेंज
1: भगवा
2: भगवा,
1: हाँ जो रहे तो जान ले ये मीठा मीठा है। हाँ, पर कभी कभी कोई कोई आम अपना मनमानी करते हैं।
0: हाँ,
1: तो हरा ही रह जाता है, तो उसे हम नमक लगा कर खा लेते हैं ना।
0: हाँ, तो जो हरा रहता है वो कच्चा रहता है।
1: हाँ, वो अपना मनमानी करते
0: हैं, फिर उसका अचार भी बना सके,
1: अचार भी बना सकते, पर कहने के तात्पर्य ये है
2: लोटस बनाता
1: है, लोटस शांता जी बनाते थे लोटस, आपको पता क्या?
0: हाँ, हम जाने ला।
1: तो उसमें क्या डालते थे शांता जी, कैसे बनाते थे उसे?
2: नीमक मर्चा कसरीपो,
1: नीमक मर्चा और कसरीपो के साथ, तो बहुत स्वादिष्ट हो जाता था, और उन्हें बना करके घाम में भी रखा जाता,
2: थोड़ा सा घाम में धर देते फिर खाओ ना,
1: तो फिर खाओ ना। तो ये संदेश है कि फलों से सीखिए, नमक लगाने पर भी स्वाद बढ़ जाता है, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर उगलता है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों। और आज का संदेश जो हमारे है, हमारा संदेश जो है कि जैसे कि जीवन में ये चाहते हैं कि हमारे घर से एक बेटा बेटी जन्म लेवे और वही हमारे बुढ़ापा का लाठी बनता ना। शांता जी, इसके बारे में आपके क्या ख्याल?
2: बुढ़ापा का लाठी बच्चे
1: जी,
2: बच्चे आज आप तो ऐसे बोले जेके बच्चे ना, और जेके बच्चे नहीं तो
1: तो बुढ़ापा का लाठी नहीं रहेगा,
2: तो बुढ़ापा का लाठी नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा?
1: वही तो यही बात है। बबली जी, आप जरा बताइए कि उसके बारे में हम सबको क्या संदेश लेकर आए आज?
3: हाँ जी, जरूर। बुढ़ापे का सहारा कौन होता है और कैसे? बुढ़ापे का सहारा बेटा या बेटी नहीं, बहू होती है। जैसे कि लोगों से अक्सर सुनते आए हैं कि बेटा या बेटी बुढ़ापे की लाठी होती है, इसलिए लोग अपने जीवन में एक बेटा या बेटी की कामना जरूर रखते हैं ताकि बुढ़ापा अच्छे से कटे। यह बात सच भी है क्योंकि बेटा ही घर में बहू लाता है। बहू के आ जाने के बाद एक बेटा अपनी लगभग सारी जिंदगी अपनी पत्नी के कंधे पर डाल देता है और फिर बहू बन जाती है अपने बूढ़े सास ससुर की बुढ़ापे की लाठी।
1: बहू क्या बन जाते हैं? बूढ़े सास ससुर की लाठी,
3: बुढ़ापे की लाठी,
1: बुढ़ापे की लाठी।
3: जी हाँ, मेरा तो यही मानना है, वो बहू ही होती है जिसके सहारे बूढ़े सास ससुर अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करते हैं। एक बहू को अपने सास ससुर की पूरी दिनचर्या मालूम होती है, कौन कब और कैसी चाय पीते हैं, क्या खाना बनाना है, शाम में नाश्ते में क्या बनाना है, रात को हर हालत में 9 बजे से पहले खाना बनाना है। अगर सास ससुर बीमार पड़ जाए तो पूरे मन या बेमन से बहू ही देखभाल करती है। अगर एक दिन के लिए बहू बीमार पड़ जाए या फिर कहीं चली जाए तो पूरे घर की दूरी हिल जाती है, परंतु यदि बेटा 15 दिन की यात्रा पर भी चला जाए तो भी बहू के भरोसे घर सुचारू रूप से चलता रहता है। बिना बहू के सास ससुर को ऐसा लगता है जैसे उनकी लाठी ही किसी ने छीन ली हो। वह चाय नाश्ता से लेकर खाने के लिए छटपटा जाएंगे, कोई और पूछने वाला उनके पास नहीं होता क्योंकि बेटे के पास समय नहीं, और अगर बेटे को समय मिल भी जाए तो वो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे यह मालूम ही नहीं है कि माँ बाबूजी को सुबह से रात तक क्या क्या देना है, क्योंकि बेटे के चंद सवाल हैं और उसकी जिम्मेदारी ख़त्म। जैसे माँ बाबूजी को खाना खाए, चाय पिए, नाश्ता किए, लेकिन कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि वह क्या खाते हैं, कैसी चाय पीते हैं। यह लगभग सभी घरों की कहानी है। मैंने तो ऐसी बहुएं देखी हैं जिसने अपनी सास की बीमारी में तन मन से सेवा की, इसलिए मेरा मानना है कि बहू ही होती है बुढ़ापे की असली लाठी। अपनी बहू में सिर्फ कमियां मत ढूंढें, उसकी अच्छाइयों की कदर करें। बहू की त्याग और सेवा को पहचानिए। बेटे या बेटी से पहले बहू को अपना मानिए। मेरी बेटी मेरा अभिमान, मेरा बेटा मेरा अभिमान भी छोड़ो, बहू मेरा अभिमान बोलो। बेटी साल में 65 दिन सेवा करेगी, बहू 300 दिन आपके पास रहेगी।

0: तो दोस्तों सुनने वालों, ये संदेश हुआ बबली जी ने लेकर आए अपने और बुढ़ापे का सहारा। तो शांता जी, इस पे आप क्या कहने वाले हैं? बुढ़ापा का सहारा।
1: हाँ, तो ये जैसे बबली ने बताई ना, तब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मिलजुल कर रहना, एक दूसरे को समझना, समझाना और समझ के रहना।
0: राजेंद्र जी, क्यों ना हम एक और गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। और आज का विषय जो हमारे बड़े धमाकेदार है, जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर के, और जैसे कि भी सुनने वालों से इस बात को सुना ही चुके हैं शांता जी कि जम्मू और कश्मीर में थोड़ा अंतर है ना, और अंतर क्या है, पर और भी काफ़ी संदेश है जो हम सब रखने वाले हैं। पहले हम एक और उसी, और क्या कहते हैं उसे राजेंद्र जी, शांता का पिटारा सा निकाला हुआ।
2: हाँ,
0: तो सभी सुनने वालों को सुना देते हैं।
2: ऊंचे पर्वतों पे मैया का बसेरा है,
0: ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे मैया का बसेरा। हमारे सभी सुनने वालों जो इस समय, खास करके जो इस समय काम भी करते हैं ना, कोई जो जैसे कि हमारे रई इंस्ट्रक्टर होते हैं जो इस समय अपने और शिक्षक को लेकर के कार में और चला रहे हैं और ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो आप सभी को लिए भी, और जो इस समय रास्ते पे है, जो अपने गाड़ी में भी ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और ख़ास करके राजेंद्र जी, बात तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये हुआ कि हमारे श्रीमती लक्ष्मण जी ने हमारे सभी कर्मचारियों के लिए, और जा करके ठंडी आने वाले है और सभी के लिए शाल और मिर्च का और तैयारी करके और ला करके फौन हिंदुस्तानी में रेडियो में पहुंचाए हैं। तो दीदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हर बार, और हम सब के लिए भी कुछ ड्रिंक आदि भी तैयारी करके, मिठाई आदि लेकर के यहां उपस्थित हो जाते हैं। हम सब जरूर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी, पूरा टीम फाहौन की ओर से। और ऐसे हमारे कार्यक्रम सुनते रहना, जरूर हम लोगों संदेश लेकर आपके साथ जुड़े रहेंगे। क्यों ना एक सुंदर सा गीत की ओर चलते हैं राजेंद्र जी, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।
2: जरूर।

0: ऊंचे पर्वतों पे मैया का बसेरा है, और जहाँ जहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत है वहाँ तो भर देवता विराजमान हैं। जैसे केदारनाथ में शिव जी हैं, बद्रीनाथ में विष्णु जी हैं, गंगोत्री में गंगा मैया है और यमुनोत्री में यमुना मैया है। इस प्रकार से ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे मैया का बसेरा रहता है। लेकिन अब हमारा समय हो रहा है किसकी तरफ, न्यूज की तरफ समय जा रहा है। तो हम न्यूज सुनेंगे थोड़ी देर, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De omstreden bezuiniging van ruim 170 miljoen euro op de gehandicaptenzorg is voorlopig van de baan. Minister Sterk heeft gisteravond laten weten dat ze elders op haar begroting een potje geld heeft gevonden om de bezuinigingen in elk geval met een jaar uit te stellen. Zorginstellingen zijn opgelucht en blij met het besluit, dat zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bekker. Asielminister Bart van den Brink heeft gisteravond een onverwacht bezoek gebracht aan het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Tijdens zijn bezoek herhaalde hij zijn dringende oproep aan Nederlandse gemeenten om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. De minister sprak met medewerkers van het COA en met asielzoekers die niet konden worden toegelaten. Vandaag is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de coronaperiode onderzoekt. Al jaren bestudeert deze commissie, die op dit moment bestaat uit 5 Tweede Kamerleden, het coronabeleid. Vanaf vandaag kan het publiek ook live meekijken met dit onderzoek. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins komen als eerste vertellen over het begin van de crisis. En de verkeersboetes gaan volgend jaar omhoog met zo'n 2,7%. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes en ook de Tweede Kamer zelf zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging en de reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk wordt het vandaag 30 tot lokaal 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
0: सब लोगों ने बड़े अच्छे से सुना और क्या करना चाहिए न्यूज में, क्या कहाँ हो रहा है इस न्यूज में, ये सब चीज़ रहता है दुनिया का खबर। लेकिन हम अपना खबर जो है सुबह के लिए वो भी कुछ चाहे ना, क्या हमें भी क्या करना चाहिए। तो जब सुबह उठते हैं तो उस समय शहद और नींबू, यानी शहद डालकर पीने के 10 लाभ हैं। गुनगुने पानी में शहद डाल के क्या क्या लाभ हैं नींबू के साथ मिला के, ये चीज़ें हमको समझना ज़रूरी है। लोगों ने, कुछ लोग जानते भी हैं, वो जो नहीं जानते वो जान भी लेंगे। सुबह गुनगुने पानी के साथ शहद और नींबू के नियमित सेवन से सेहत से जुड़ी कई समस्याओं से हमारा हमेशा के लिए निजात मिल जाती है। निजात यानी छुट्टी मिल जाती है बीमारियों से। गुनगुने पानी में शहद के फायदे, इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि सुबह एक गिलास गुनगुना पानी में नींबू का रस और शहद मिलाकर पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। शहद को गर्म पानी के साथ लेने से वजन कम होता है और इसके नियमित सेवन से सेहत से जुड़े कई समस्याओं से हमेशा के लिए निजात मिल सकती है।
4: हाँ राजेंद्र जी, बात यह है कि ये जो आप हम लोग को ये संदेश सुना रहे हैं ना, और जिसे हम गुनगुना के बोले तो हल्का गर्म होना चाहिए और नींबू डाल के और इससे भी वजन कम होता है।
0: जो लोग मोटे लोग हैं, मामा जैसे लोग हैं, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है।
4: तो मामा को ये तो रोज पीना चाहिए।
0: हाँ,
4: तो ऐसा है तो ये कार्यक्रम जरूर सुनते होंगे मामा जी। तो अगर आप इस पे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि वजन इससे भी घटता है। और पर सिर्फ वजन नहीं है, शांता जी भी कुछ कहने वाले हैं। राजेंद्र जी,
5: लो वातर में होने डाल के और नींबू
4: लमचे पर इसमें तो संदेश कुछ और है मेरे ख्याल से राजा।
0: हाँ अभी और है, काफी संदेश है। हम आपके लिए लेकर आए हैं गुनगुने पानी के साथ शहद का सेवन करने के फायदों के बारे में, अच्छे पाचन के लिए सुबह गर्म पानी में शहद और नींबू मिलाकर पीना चाहिए।
4: पर राजेंद्र जी ये तो बताओ, पाचन अब थोड़ा अब हम लोगों है क्वाटा भिंडी डाम लिफोर्नो और ऐसे सरमक्का,
0: पाचन यानी
4: तो सर नाम में थोड़ा ना
0: भोजन खाते हैं वो अगर पचे ना मोई से तो पेट में पड़ा रहे, तब जब पचता नहीं तो सड़ जाता है, सड़ जाता है तो
4: पचानी का,
0: हाँ पचानी का
4: ऐसा।
0: तो इसलिए शहद में नींबू मिलाकर पीना चाहिए, या पेट को साफ करने में मदद करता है और लीवर में रस के उत्पादन को बढ़ाता है जिससे पाचन में मदद मिलती है। नींबू में मौजूद एसिड आपके पाचन तंत्र में मदद करता है और अवांछित विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा शहद एक एंटीबैक्टीरियल के रूप में कार्य करता है और आपके शरीर में मौजूद किसी भी तरह के संक्रमण को दूर करने में मदद करता है और कब्ज को भी दूर करता है। कब्ज दूर कैसे करें इस बारे में भी समझना होगा।
4: तो या अब ये तो बात बता दो, कब्ज क्या चीज है?
0: कब्ज मतलब जैसे हम जो भोजन खाते हैं और वो वहीं जम जाता है, पेट से साफ नहीं होता, तो रुका हुआ पेट में भोजन को कब्ज कहते हैं।
4: ऐसा
0: ऐसा
4: तो ये भी गुनगुना पानी और नींबू और शहद से इसका भी,
0: हाँ ये मिश्रण जो है कब्ज के लिए तत्काल उपाय मतलब तुरंत काम करता है, पेट साफ हो जाता है। या आंत का प्रोत्साहित कर मल त्यागने में मदद करता है। इसके अलावा यह आंत म्यूकस में बढ़ावा देता है, म्यूकस यानी उसका लुब्रिकेशन, पेट को हाइड्रेट करता है और सूखे मल को पानी में भिगो देता है। इन सब की एक साथ मौजूदगी से मल त्यागने में मदद करता है। लस्सी का प्रणाली की सफाई इसमें मददगार, लस्सी का प्रणाली में पानी और आवश्यक तरल पदार्थ की कमी हो जाती है जिससे आपको सुस्त और रुका हुआ महसूस होना, कब्ज, सोने में परेशानी, उच्च या निम्न रक्तचाप, यानी रक्तचाप का मतलब रहता है जो ब्लड सर्कुलेशन ये तो तेज हो रहा है या कम हो रहा है, तो रक्तचाप उच्च या निम्न नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए,
4: ब्लड ग्रुप जो कहते हैं ना।
5: और जब कब्ज होती है तो पेट में बहुत दर्द भी होता है,
0: बहुत दर्द, तनाव और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। सुबह सुबह इस मिश्रण को पीने से लसीका प्रणाली को हाइड्रेट होने में मदद मिलती है जिससे न केवल सभी उपरोक्त लक्षणों बाकी प्रतीक्षा प्रणाली में भी सुधार होता है। इस प्रकार से इन चीज़ों में सुधार होता है। अब हम बात करते हैं मौखिक स्वास्थ्य में सुधार। जो स्वास्थ्य में सुधार कैसे होना चाहिए, एसिडिटी प्रकृति का नींबू शहद और गुनगुने पानी के साथ सांसों की बदबू को तुरंत दूर करने में मददगार होता है। नींबू अपनी लार ग्रंथियों को सक्रिय और आक्रामक बैक्टीरिया को मारकर मुंह शुद्ध करने में मदद करता है। सांस में बदबू का कारण जीभ पर सफेद परत का गठन मुख्य रूप से खाद्य और बैक्टीरिया से मिलकर भी है। यह रस इस परत को प्रभावी ढंग से हटाकर सांस की बदबू से प्राकृतिक रूप से छुटकारा दिलाता है और मूत्रवर्धक में रूप में कार्य, शहद में बहुत ही शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल के रूप के गुण होते हैं।
4: ये सब सिर्फ वो
0: सिर्फ सुबह नींबू और शहद गर्म पानी गुनगुने पानी में डालने से ये सब चीजें ठीक होती हैं।
4: तो राजेंद्र जी जरूर हमें तो इस बात को पता है कि फाहून हिंदुस्तानी रेडियो हमारे सभी सुनने वालों के लिए एक अपना अपने ओर से और मौका मिलता है हम लोग के संदेश सुनाने के लिए, और जो अन्य देशों में भी ये कार्यक्रम को सुना जाते हैं, तो क्यों ना हम एक सुंदर सा और गीत के ओर, क्योंकि ये बात है राजेंद्र जी, हमारा जब बुढ़ापा आते है ना,
0: हाँ।
4: तो कुछ बातें हमें हर बार ख्याल आता है कि अब तो बच्चे भी परिंदे जैसे हो गए हैं। अब तो बच्चे भी परिंदे जैसे हो गए हैं, साथ रहकर बड़े होते हैं और बड़े होकर भी उड़ जाते हैं। तो जब उड़ जाते हैं तो आपको अपना सेहत के भी ध्यान देना चाहिए। आप कैसे और क्या कर सकते हैं, जरूर इसमें कुछ संदेश है जो हमारे पास रखा जाता है और उसे आपके लिए हम सब कोशिश करते हैं रखने के लिए। हम सब एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे और फिर गीत के बाद ये संदेश पूरा नहीं हुआ ना राजेंद्र जी?
0: नहीं, अभी थोड़ा सा एक बार और रहेगा।
4: तो एक बार और रहेगा ये संदेश जो जिसमें महत्वपूर्ण बात है, गरम क्या कहते हैं,
5: गुनगुने पानी
4: लव वाटर में मिलाकर नींबू और
5: शहद
4: शहद कहते हैं राजेंद्र जी,
0: हनी
4: को। तो वो उसमें कितना ताकत है, कितना वक्त द बलंगराई का एसेंसिस दरफान और वाच दरमियाई काम बराई का। तो दोस्तों हम एक सुंदर से गीत के ओर पहले बबली जी कुछ कहने वाले हैं,
5: क्योंकि उसमें नींबू अपना असर करेगा, शहद अपना असर करेगा और पानी अपना असर करेगा। जब तीनों चीजें मिल जाएंगी तो बहुत अच्छा होगा।
4: ऐसा होता है तो राजेंद्र जी ऐसा क्यों ना वही पिटाड़ा में और जो कंप्यूटर में हम लगा चुके हैं शांता जी जो खोज करके लाए।
0: हाँ, जो गीत के बोल है, ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतर आओ माँ, चला देते हैं।

0: ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतर आओ माँ। अगर माता जी नीचे उतराई फिर लोग ऊपर कैसे जाएंगे?
1: इस बात पे जरूर कुछ कहना चाहूंगा कि हिसाब किताब तो सिर्फ ऊपर वाला ही, और हिसाब किताब सिर्फ ऊपर वाला ने ही सही और लगाया करता है। सबको खाली हाथ भेजते हैं और खाली हाथ बुलाया करता है। तो दोस्तों, अभी आप जो संदेश सुन रहे हैं राजेंद्र जी की ओर से कि सुबह में और जा करके जो गर्म पानी लव वाटर से और मिला करके नींबू और शहद जो होनिंग कहा जाता है, कितने कितने और चीज़ों के लिए लाभदायक है, राजेंद्र जी हम सबको आगे और सुनाइए।

0: आगे का संदेश इस प्रकार है कि इसमें कई प्रकार के संक्रमण को दूर करने की क्षमता भी होती है। नींबू और पानी के साथ यह मिश्रित एक उत्कृष्ट आपके शरीर से बाहर निकालने वाला एजेंट के रूप में कार्य करता है। यह आपके मूत्र मार्ग को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है, यानी यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से पीड़ित महिलाओं के लिए यह रस का एक वरदान की तरह साबित हुआ है, क्योंकि यह संक्रमण को दूर करने में मदद करता है, एनर्जी लेवल बढ़ाता है। शहद और गर्म पानी से शरीर में एनर्जी में भी वृद्धि होती है। शरीर से ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न होने से शरीर का मेटाबॉलिज्म और कार्य प्रणाली में भी वृद्धि होती है। शहद शरीर के अंगों को ठीक से काम करने के लिए प्रेरित करता है। सुबह में गर्म पानी नींबू के साथ लेने से आप दिन भर ऊर्जावान बने रह सकते हैं। वजन घटाने में मददगार किस प्रकार होता है? शहद और नींबू के साथ गर्म पानी लेने से भूख कम लगती है। शहद और नींबू के साथ गर्म पानी में बड़ी मात्रा में फाइबर मौजूद होता है, जो भूख की इच्छा और शुगर लेवल को कम करके पर्याप्त एनर्जी प्रदान करता है। इस प्रकार से नियमित रूप से सुबह इसका सेवन करने से दिन भर में आपके द्वारा लिए गए भोजन की मात्रा कम हो जाएगी। अपने दिन की शुरुआत गुनगुने पानी के साथ शहद और नींबू के साथ करने से आपका वजन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ये त्वचा के लिए भी लाभकारी है। त्वचा यानी
1: कि हमारे चमड़े।
0: हाँ, त्वचा के लिए नींबू के लाभ अनगिनत हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें मौजूद क्लेंजिंग तत्व रक्त को शुद्ध करने में मदद करता है, नई रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में मदद करता है। पानी और शहद का मिश्रण आपकी त्वचा के लिए एक अनूठा दृढ़ जीवाणुरोधी और कोलेजन बढ़ाने वाले गुण होते हैं। इसलिए अगर आप स्वाभाविक रूप से चमकदार त्वचा चाहते हैं तो यह पेय आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। पोषक तत्व और विटामिन से भरपूर शहद और नींबू के गर्म पानी में कई जरूरी एंटी ऑक्साइड विटामिन और पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी मौजूद होता है, इसलिए इसके सेवन से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, साथ ही यह वजन कम करने में सहायक होती है। रोग प्रतिरोधी क्षमता में मजबूती, शहद का सेवन शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद, इसलिए डॉक्टर हमेशा इसके सेवन की सलाह देते हैं। शहद के साथ नींबू और गुनगुने पानी के नियमित सेवन शरीर की प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है। शहद और नींबू में मौजूद एंटी ऑक्सीडेंट्स और कई पोषक तत्व शरीर को मौसम बदलने के साथ होने वाले संक्रमण को भी दूर रखने में मदद करता है। इस प्रकार ये बहुत ही अच्छा जो मिश्रण है तीन चीज़ों का, पानी यानी गुनगुना पानी, शहद और नींबू, तो ये सब इतनी चीज़ों में मदद करता है। तो जो लोग इसके बारे में पहले से जानते करते आए हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उस चीज़ को शुरू कर सकते हैं इस प्रकार से अपना। तो संजय जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे इस बारे में?
1: जरूर राजेंद्र जी, पूछना तो ये है कि जरूर ये संदेश जो आपने दिए हैं ना, हमारे सभी सुनने वालों इससे जरूर कोई ना कोई और लाभ उठाए, ताकि हमें छोटा सा चीज़ है ना, कोई मंगा दवाई नहीं, कोई मंगा दवाई, राजेंद्र जी शांता जी का माइक ऑफ है, कोई मंगा दवाई नहीं है। और इससे कितना आसानी से और कितना चीज से हम सब अपने शरीर अपने में बदलाव ला सकते हैं ना,
2: फायदादार है। हाँ,
3: क्योंकि सब चीज़ें घर पे मौजूद होती हैं, घर में मिल जाती हैं, बाहर से लाने की भी नहीं ज़रूरत।
1: तो अगर दोस्तों इस बात को जरूर ध्यान देना, और राजेंद्र जी जो इस समय पैनल पे दूसरा गीत के रखने वाले हैं, पर आज का विषय जो जम्मू कश्मीर है वहाँ का राजा भी जिनका, और राजेंद्र जी कितने साल के हुए राजा वहाँ का?
0: राजा जो महाराजा करण सिंह है, राजा हरि सिंह, उनके जो पिताजी राजा हरि सिंह उम्र 96 ईयर हो चुका है,
1: 96 ईयर,
0: और अभी भी वो अच्छे से चलते फिरते हैं, बड़े सब काम करते हैं। वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनाए हैं जो कि अभी भी सुचारू रूप से सब अच्छे ढंग से चलते हैं। जम्मू कश्मीर में भी है, हरिद्वार में, पूरे भारतवर्ष में उनके मंदिर
1: मंदिरों बनाए हैं
0: बहुत।
1: और जो जिनका, और हम अभी उसके बारे में जरूर सुनने वाले हैं, पर बबली जी मैं देख रहा हूँ आप भी कुछ कहने वाले हैं।
3: हाँ जी जरूर, एक छोटा सा संदेश है, मौत की गाड़ी में जिस दिन सोना होगा, ना कोई तकिया ना बिछोना होगा, साथ होगी दोस्तों की यादें और एक शमशान का कोना होगा, और वहाँ लिखा होगा मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते, क्या मिला तुझे दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया जाते जाते।
1: तो ये तो पूरा सत्य है, और हम सब उस पे जरूर इन बातों को, सुंदर सुंदर संदेशों को जरूर कार्यक्रम में रखते हैं। शांता जी कुछ आप कहने वाले थे, जम्मू कश्मीर कब जा रहे हैं आप?
2: जम्मू कश्मीर अगर बुलावा होगा तो जाऊंगी, पर जम्मू कश्मीर में वो श्रीनगर कहते हुए ना,
1: श्रीनगर
3: कश्मीर में,
2: कश्मीर के श्रीनगर, और क्षीर सागर कहाँ पे, वहाँ पे भी है
0: क्षीर सागर, भगवान विष्णु लोक में है जहाँ पे दूध का सागर है, जैसे हमारे इस धरती इस भूमंडल में पानी का सागर है, वैसे ही विष्णु लोक जो है, विष्णु लोक में वहाँ दूध का सागर है, इसलिए क्षीर मतलब दूध, उसका सागर है, दूध का सागर है जहाँ भगवान विष्णु अपने शेष नाग की सैया पे लेटे रहते हैं, उसको क्षीर सागर बोलते हैं।
1: और वहाँ बस शांता जी आपका कोई इरादा थोड़ो है उधर जाने का?
0: अभी तो नहीं होगा
2: अगर जाना हो तो जरूर जाऊंगी।
1: और दोस्तों हम अगले गीत की ओर जरूर बढ़ने वाले हैं, अभी जो हमारा विषय है उसके बारे में राजेंद्र जी हम सबको सुनाने वाले हैं कि जम्मू कश्मीर के बारे में। पर पहले उस ओर बढ़ने से पहले इस बात को जरूर कहना चाहूँगा कि ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है ना, ये रेडियो जो हम सबको ये अवसर में देते हैं, डायरेक्टर और जो हम सबको ये अवसर देते हैं, और कार्यक्रम जो यहाँ से हम लोग का ग्रुप जो है जिसमें हम सब इकट्ठा होकर के और कार्यक्रम बनाते हैं ज्योति का प्रकाश। और ज्योति का प्रकाश का लक्ष्य भी यही है कि हमारे जीवन का ज्योति जो जल रहा है उसमें थोड़ा और प्रकाश आ जाए। तो यही आशा रखते हुए हम सब हर बार, और हमारे विशेषज्ञों जो भारत देश से और यहाँ हॉलैंड से भी जो हम सब के लिए तेईमास खोज खोज करके रखते हैं, भाई संजय शर्मा जी जो दिल्ली पहाड़गंज से, भाई रिंकू और कालिया जी जो उत्तम नगर द्वारका से, मोहन गार्डन से, हॉलैंड देश में रत्ना जी जो दनहाख से हम सब के लिए कार्यक्रम रखते हैं और विषय खोज कर और रखते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और राजेंद्र जी गीत की ओर हम बढ़ेंगे, गीत के बाद में आज का विषय उस ओर छलांग लगा देंगे।

0: चंचल जी ने भजन गाया है, बहुत ही अच्छा भजन वो गाते हैं, गाते थे, अब तो रहे नहीं, अभी पिछले साल चले गए बेचारे, लेकिन उनके भजन अमर हैं और सब लोग उनको बड़े प्रेम से सुनते हैं आज भी। अब हम अपने विषय की ओर चलते हैं कि कश्मीर की जो 10 मेन बातें हैं पहले वो करेंगे, इसके बाद वहाँ के राजा की बात करेंगे। कश्मीर के बारे में 10 वाक्य। कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग होने के अलावा यह अपनी खूबसूरत वादियाँ, जंगलों, नदियों और फलों के पैदावार के लिए मशहूर है। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम ही लगती है, क्योंकि इसकी बहुत से विशेषताएं हैं जिनको इस छोटे से निबंध में बयान नहीं किया जा सकता। जो हमारा कार्यक्रम अब बच गया है, इसमें क्या हम इस कश्मीर के बारे में बोलें, क्योंकि बहुत बड़का बात रहा, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि छोटे से समय में ही बड़ी बात हो जाए तो क्या कम है।
1: बिल्कुल एकदम राजेंद्र जी, क्योंकि कश्मीर के और एक उसे कहा जाता है दुनिया का स्वर्ग, ऐसा हाँ, कितने लोग भी कहते हैं।
0: परंतु आइए जानते हैं कश्मीर के बारे में जो 10 प्रकार की लोग बात करते हैं। नंबर एक बात है कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहते हैं, जैसे कि संजय जी आप कही रहे हैं धरती का स्वर्ग है, यह राज्य भारत का अभिन्न अंग है। और नंबर तीन बात जो है, कश्मीर का भूभाग सबसे बड़ा है। चौथी बात इसमें आती है कि कश्मीर को भारत का मुकुट भी कहते हैं। इसके इतिहास बेहद प्राचीन हैं, कश्मीर का इतिहास सबसे पुराना है। मुगल शासक जहांगीर ने कश्मीर को परियों का देश से संबोधित किया था। और नंबर जो 7 बात है, कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। गुलमर्ग को सुंदर और सुगंधित पुष्प इसकी सुंदरता बढ़ा देते हैं। जो गुलमर्ग एक जगह है वहाँ पे पुष्प बड़े सुंदर हैं और सुगंधित पुष्प है, खुशबूदार पुष्प है, फूल यानी फूल। यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर में ही है। डल झील देश और विदेश के नागरिकों को आकर्षित करती है। डल झील है जो, उसमें विदेशी नागरिक बहुत से आते हैं, उसको सब लोग देखते हैं। कश्मीर भारत का सबसे एक और बेहतरीन राज्य है। यह उत्तर भारत में झेलम नदी की घाटी पर स्थित है। कश्मीर को दुनिया का स्वर्ग तो कहते हैं, लेकिन लोग इस स्वर्ग को देखने से देश विदेश सब जगह से आते हैं। ये सभी मौसम में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इसमें गर्मी हो, सर्दी हो, बर्फ पड़ी हो या कैसे भी मौसम हो, सब में अच्छा दिखता है। गर्मियों में कश्मीर में हरियाली देखने को मिलती है, गर्मियों में भी हरा रहता है, और सर्दियों में यहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखती है। यहाँ पर जब जो सेब है उसकी पैदावार सबसे ज़्यादा होती है, और पूरे देश में तो भारत में तो जाता ही, विदेशों में भी इसका सेब जाता है कश्मीर से है। और मैंने देखा है कि कश्मीर में जो जंगल है, जंगल में भी सेब होते हैं।
2: लेकिन कश्मीर के शॉल भी बहुत मशहूर हैं, पश्मीना शॉल।
0: हाँ, उन जंगलों में पश्मीना शॉल के, पश्मीना जो बनता है, पश्मीना एक रिंग होती है जो उसके बीच से पूरा शॉल निकल जाए तो
2: हाँ जी, हाँ जी।
0: और कश्मीर में घूमने के लिए बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल है, बहुत लोग इसमें घूमने के लिए आते हैं और घूमने लायक जगह है।
1: राजेंद्र जी, मैंने नहीं समझा, मैं इस बात को नहीं समझा, क्योंकि आपने दिखाया कि उंगली में जैसे कि कुछ क्या उसके बारे में कुछ।
0: हाँ, उंगली में जो दिखाया रिंग नहीं होती जो उंगली में।
1: हाँ हाँ जी,
0: अंगूठी।
1: हाँ जी,
0: उस रिंग से जो सॉल है,
1: यानी कि रस्सी निकाल सकता उतना पातर
0: जो सॉल है।
1: हाँ,
0: कश्मीर का।
1: हाँ जी,
0: वो उस रिंग से निकल सकता है, यानी इतना पतला और इतना
1: पातल रस्सी। हाँ,
2: क्योंकि कश्मीर के शॉल बहुत मशहूर है, प्रसिद्ध है।
1: ऐसा बात है।
0: पश्मीना, जो कश्मीर का पश्मीना है,
1: पश्मीना
0: वो पश्मीना ही निकल सकता है।
2: शॉल का नाम है पश्मीना।
0: और गुलमर्ग की खूबसूरती के कारण इसे कश्मीर की जान भी कहा जाता है। गुलमर्ग जो एक जगह है उसकी खूबसूरती बहुत है। कश्मीर भारत का एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल होने के साथ साथ यह सर्दियों से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। इसको कुछ विशेषताएं और खूबसूरती का कारण बहुत प्रसिद्ध कर जाती है। कुछ कारण हैं इसे प्रसिद्ध जो बनाते हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे केसर, केसर यहाँ का बड़ा फेमस है, सिकारा, मौसम यहाँ का बड़ा अच्छा, सेब और सूखे मेवे, सूखे मेवे में जैसे बादाम है, अखरोट है, और
1: मेवा कहते हैं ड्राई फ्रूट ना,
0: ड्राई फ्रूट्स, हाँ बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स जो कश्मीर में होते हैं। और यहाँ का गुंडोला, गुलमर्ग में गुंडोला होता है, और इस प्रकार से कश्मीर और भी खूबसूरत इन चीज़ों से हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि कश्मीर में कौन सा फल प्रसिद्ध है, जो यहाँ का फल है वो दुनिया में कौन सा प्रसिद्ध है। तो यहाँ के सेब दुनिया भर के मशहूर हैं, यह अपनी सेब,
1: सेब कहते हैं वो एप्पल,
0: एप्पल।
1: पर राजेंद्र जी, होलांद में तो रंग बिरंगी, कभी एल स्टार तो कभी गोल्ड स्टार की क्या क्या नाम है शांता, ढेर सारे ना,
0: जो तो वहाँ का जो वहाँ का है सेब, वो हर प्रकार का सेब वहाँ रहता है,
1: वो सब प्रकार,
0: सब प्रकार का। यहाँ के सेब दुनिया भर में मशहूर हैं, यह अपने फल उत्पादन, सेब जो है यहाँ का सबसे प्रसिद्ध फल है। यह राज्य भारत में स्ट्रॉबेरी उत्पादन के रूप में भी उभर रहा है, स्ट्रॉबेरी में भी यहाँ आगे हो रहा राज्य बहुत ज़्यादा। अत्यधिक मांग के और उत्पादन के कारण युवा अपनी लाभदायक आजीविका के लिए स्ट्रॉबेरी की खेती में उद्यम कर सकते हैं, यानी स्ट्रॉबेरी की खेती में अभी लोग इस तरफ जा रहे हैं। सेब तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन स्ट्रॉबेरी में काम चल रहा है।
1: स्ट्रॉबेरी बोले तो
0: कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाती है यहाँ पर?
2: डोगरी।
0: हाँ, अधिकतर कश्मीरी डोगरी बोलने बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में मौजूद उर्दू और अंग्रेजी के अलावा कश्मीरी डोगरी और हिंदी आधिकारिक भाषाएं होंगी। आगे जो भाषाएं होंगी यहाँ पे हिंदी होगी, अंग्रेजी भी थोड़ा बहुत बोली जाएगी, और डोगरी तो है ही है, लेकिन कश्मीरी भाषा में पुरानी जो उर्दू बोलते हैं लोग वो भी थोड़ा सा रहेगी। अब प्रश्न है कि कश्मीर में लड़की को क्या कहते हैं?
1: लड़की को
0: सभी राज्यों ने अपनी भाषा है, सभी राज्यों की अपनी अपनी भाषा है, और किसी वस्तु विशेष को स्थानीय भाषा में अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे कश्मीरियों में एक लड़की को कूर कहा जाता है।
1: ऐसा
0: जी, इस प्रकार से कश्मीर का जो इतिहास है अलग अलग प्रकारों से है। कश्मीर की बात करें तो क्यों ना एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़े, और फिर हम लोग कश्मीर की बातें आगे भी करते रहेंगे।
1: जरूर राजेंद्र जी।
0: कश्मीर जम्मू में ही वैष्णो माता जी का मंदिर है, और वहाँ के जो भजन है बड़े प्रसिद्ध हैं, तो उसी को क्यों ना चला दिया जाए।

0: तो काफी नजदीक हो गया, लेकिन लागी छूटे ना अब तो सनम। ये एक हमारा जो गाना है वो बड़े ही फेमस है, वो जैसे ही इस गाने की तरफ हम बढ़ते हैं सबको पता चल जाता है कि ये लोगों का समय जो 2 घंटा है वो पूरा हो चुका है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जो हमें इस बात से पता चल जाता है कि कार्यक्रम अपने समाप्ति के सीमा पे आकर पहुंच चुके हैं।
0: तो चला देते हैं लागी,
1: चला देते हैं राजेंद्र जी।

उनको हीरे मिल गए जिनको हीरों की चाहत थी, और वो खुद हीरे बन गए जिनको गोविंद की चाहत थी। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार।

फूलों की तरह महकते रहो और सितारों की तरह चमकते रहो। आपके साथ दी आपको हम दिल से धन्यवाद कहती हूँ। साथ देने और सुनने के लिए आपको धन्यवाद। सेविका शांता की प्यार भरे राम राम प्रणाम।

चाहे जाए जिया तेरी कसम लागी छूटे ना। तो इसी प्रकार हम भी रेडियो से कभी छूटेंगे नहीं, चाहे तो कुछ भी हो जाए, चाहे जिया जाए या रहे, लेकिन रेडियो के साथ हम सर में हर समय बने रहेंगे। हर बार की भांति अगली बार भी फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी श्रोताओं को जो हमारे इतना प्रोग्राम साथ देते हैं सुनने के लिए और बड़े प्रेम से सुनते हैं, तब तक के लिए सबको नमस्कार।

जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। आज का कार्यक्रम में हमारे सहयोगी साथी और जाकर के समता खेमाई जी, बबली आसरा जी, राजेंद्र सिंह जी, अब मैं हूँ आपका सेवक संजय। आशा जरूर ये रखता हूँ कि कुछ ना कुछ संदेश आप तक पहुँचा होंगे। हम ये बस यही कहना चाहूँगा कि लोग अक्सर कहते हैं जिंदगी रहेंगे तो मिलेंगे, मगर एक सच्चे अच्छे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। बस यही जिंदगी है। नमस्कार दोस्तों।

0: जा रहे हो?
1: टीवी बंद करने, कुछ बातें करते हैं।
0: बैठो ना, कितना अच्छा गाना है। मैं भी ये गाना याद कर लेता हूँ। अगर तुम कहीं गई ना तो मैं भी

बेवफा जा, हमने तेरा वादा देखा, आपको सुना दी है ये सुंदर सुंदर सा गीत महेंद्र कपूर। और उससे पहले था हम जब सिमट के आपके करीब आ गए, फिल्म वक्त से पहला गीत जो आपने सुने वो फिल्म वक्त से, और दूसरा था जो महेंद्र कपूर के आवाज़ में यहाँ से हमने श्रवण की है। के लिए मैंने ये सुंदर सा गीत चुन कर रखी हूँ, ज़रूर से आप सुनें।

0: शमा, ये खुशी काफ़ी दिनों के बाद आपके लिए आपकी काफा ऑन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से लाया गया है। और हम आपको बता दें, फिल्म का नाम है घर घर की बात। नेक नफ़ तक के ये सुंदर सा फिल्म पिक्चराइज किया गया है और मुकेश और लता जी ने हमको यहाँ से, जी हाँ, सुना दी है, हमने सुन ली है ना?
1: दिल के करीब।
2: छोड़िए मेरा हाथ, छोड़िए ना। जानते हैं आप, आपकी हरकत पे मैं आपको कानून के हवाले कर सकती हूँ।
1: भगवान करे वो दिन जल्दी आ जाए जब कानून हमेशा के लिए हमें एक दूसरे के हवाले कर दे।
0: बहुत प्यार के साथ आपके लिए पेश किया जाता है, दिल थाम के सुने।

सांसे दिल छेड़ दे, ये सुंदर सा गीत हमको सुना दी है, हम फिर से एक बार देख ले। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी जी और लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफ़ी जी, फिल्म का नाम पासपोर्ट निकटीन इन सस्तक में, ये सुंदर सा फिल्म भी पिक्चराइज किया गया है।

सुने श्री महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में, और ये दूसरा भाग आशा भोसले जी की आवाज़ में। ऐसा है कि दो व्यक्ति ये गीत गाए हैं, और इसका मतलब है पहला जो था प्रश्न था, और ये दूसरा जो आशा भोसले जी ने गाई है ये पहला गीत का उत्तर है। यानी कि फ्राग है एंड आंतर्थ होता है। फिल्म का नाम जिंदगी और मौत निकली 5 और 6 तक के ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है। Van het leven heb ik geleerd, voor elke zonsondergang is een nieuw begin. Jab sham ko surya ast hota hai, iska matlab hai savera zarur hoga. Voor elke deur die dicht gaat, gaat er één open. Kahawat hai agar koi एक दरवाजा बंद करता है तो ऊपर वाला आपके लिए जरूर से कई अन्य दरवाजा भी खोल देता है। For Alec lived the end, begin a new. For elk einde is er een nieuw begin. जैसे कि एक रास्ता जहाँ से ख़त्म होता है वहीं से दूसरा रास्ता शुरू हो जाता है। जिंदगी चलने का नाम है। एलक फॉर ट्रैक इज एर अन अनकोम्स। फॉर एलक फॉर ट्रैक इज एर अन अनकोम्स। जैसे कि एक छोटी सी उदाहरण, हम घर से निकले तो हम यहाँ आ गए, और यहाँ से निकलेंगे तो फिर घर वापस चले जाएंगे। फॉर एलक नीदरलाख इज एर रेफरेंस। रेफरेंस मतलब कि तरह पाकन वराक नीमन, पर आप व्राक ना लेना। वो खुद ही पाएगा जो जैसा करेगा। Nichts ist vollendet so lang er leben ist. Nichts ist vollendet so lang er leben ist. जब तक ये प्रकृति है चढ़ाव उतराव लगे रहेगा। तो इसे आप घबराना नहीं। और मुझे पता है कि आप घबराओगे भी नहीं, क्योंकि इवेंट खून इन स्टेरक इन दिफिदू। आत्मनिर्भर आप में है, शक्ति है प्रभु के आप में।

सुन रहे फाव हिंदुस्तानी रेडियो, जिस पर आप और मैं चुन हूँ। आपको ढेर सारा प्यार मिले आपका फाव हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से।

सुंदर सा इंस्ट्रूमेंटल आपके लिए पेश किया जाता है आपका फोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। आपको यहां से एक बार फिर हार्दिक से स्वागत है।

फिर पुकारे आ रे आ रे आ, लता जी और रफी जी की आवाज़ में फिल्म का नाम ज्वलती।

पैसा, कब तक पैसे की पूजा करोगे, कब तक खुद को खुद से जुदा करोगे। हाँ जी हाँ, कब से खुद से खुद को जुदा करोगे। दुनिया में रहकर देखो बस इतना, सब कुछ मिलता प्यार से कितना। सब कुछ पाने के बाद फिर सोचो, सब कुछ पाने के बाद फिर सोचो, पहले क्या था अब क्या हो।

गांव में रहने वालों की नज़र शहर पे होती है और शहर के रहने वालों की नज़र विदेशों में होती है। विदेश के रहने वालों की नज़र चांद तारों पे होती है। फिर भी कोई सुखी नहीं। सुखी वही है जिनकी नज़र अपने ही परिवार पर है। मैं कहती हूँ खुद को खुद ही खुश रखो। ये जिम्मेदारी किसी और को ना दे बल्कि अपने आप में खुश रहो।

फिल्म का नाम नया दौर, और इस बार आपको लेकर चलते हैं सुनने के लिए, जिनका नाम राधा है। राधा, राधा नाम के एक सुंदर सा गीत यहाँ है कि बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं।

0: क्या होना, क्यों सताते हो? होगा होगा होगा।
1: जी हाँ, वो कह दे कि होगा होगा होगा। इसके साथ मैं ये कहती हूँ कि जिंदगी एक बार मिलता है, जिंदगी एक बार मिलता है, बिल्कुल गलत। जिंदगी एक बार मिलता है, बिल्कुल गलत। सिर्फ मौत एक बार मिलती है। जिंदगी हर रोज मिलती है, बस जीने, बस जीना आना चाहिए।
2: तेरे

फिल्म का नाम लीडर, फिल्म लीडर से यहाँ से आपने सुन ली और हमने यहाँ फाहन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से आपको सुना दी।

नजदीकियां बन गए ये इत्तफाक है, दूरियां नजदीकियां बन गई ये अजब इत्तफाक है। फिल्म का नाम दुनिया।

समय रहते खुद को बेहतर बनाइए, समय रहते खुद को बेहतर बनाओ, वरना आपसे सीखने वाले लोग भी आपसे आगे निकल जाएगा। ये दो लाइनें जो मैं कहने जा रही हूँ ये भी बहुत अच्छा है, आप इसे सुने। जानवर मार खा कर भी वफादार है, जानवर मार खा कर भी वफादार है, और इंसान प्यार पाकर भी।

का नाम छोटी सी मुलाकात, इसमें कमाल दिखाई है विजयंती माला जी, विश्वजीत जी। गीत को सुनाए हमको मोहम्मद रफी जी, साथ में दे रहे थे आशा भोसले जी।

रिश्ते कभी नहीं बदलते, रिश्ते कभी नहीं बदलते, रिश्ते निभाने वाले बदल जाते हैं। हाँ, आप सही सुना कि रिश्ते कभी नहीं बदलते बल्कि रिश्ते निभाने वाले बदलते हैं। किसी के आने या जाने से दुनिया नहीं बदलती, किसी के आने या जाने से दुनिया नहीं बदलते, बस जीने का अंदाज

0: घरी घरी मोरा दिल धर के फिल्म का नाम मधुमती लता जी की आवाज में। इस बार किशोर दा जी फिल्म का नाम रंगोली।
1: छोटी सी ये

साज क्या संगीत ये आपके लिए पेश किया जाता है। सुनो और मुझे दुनिया वालों शराबी ना समझो, विजयंती माला और दिलीप कुमार का फिल्म है। फिल्म का नाम लीडर नेहदीन फिरन से तक में ये पिक्चराइज किया गया है। रफ़ी जी की आवाज़ में कितना मधुर आवाज़ में हमको सुना दी कि मुझे दुनिया वालों शराबी ना समझो।

कहती हूँ कि रिश्ता उसी से रखो जो खुशी से तुम्हारा साथ दे, रिश्ता उसी से रखो जो खुशी से तुम्हारा साथ दे। किसी के पीछे पड़कर बार बार खुद को जलील करवाना अच्छी बात नहीं है।

0: प्यार भरे गीत सदाबहार गीत आपके लिए पेश किया जाता है। फिल्म का नाम हम देखें और आपसे बता दें, आस का पंछी। फिल्म का नाम आस का पंछी नेखतेन एनएसएस तक में ये पिक्चराइज किया गया है। मुकेश और लता जी की आवाज ही है।
1: एक प्लस रेडियो सुनाते हैं साफ और स्पष्ट आवाज, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग की राज। आप भी ले द प्लस रेडियो और दूर दूर तक देश के कोने कोने में सुने फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो की वाणी, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग आकाशवाणी।

जुल्मी संग आंख लड़ी फिल्म का नाम मधुमती। जी हाँ, फिल्म का नाम मधुमती लता जी की आवाज़ में यहाँ से हमने श्रवण की है। दूध में मिला जल भी दूध बन जाता है, दूध में मिला जल भी दूध बन जाता है। ये तो बात सही है, अगर दूध में आप पानी मिला दो, जल मिला दो, तो वो दूध का आकार ले लेते हैं। आप उसमें जल नहीं देखते हैं बल्कि उसका वॉल्यूम थोड़ा से ज़्यादा हो जाते हैं, पर दूध दिखता है, जल उसमें मिल जाता है। ऐसे ही अच्छे लोगों के संगत में, ऐसे ही अच्छे लोगों की संगत से हम भी

वही मशहूर फिल्म रंगोली से निकाला गया है किशोरदा जी के आवाज़ में, किशोरदा और लता जी के आवाज़ में।

0: अर्जियाँ सुना दी है आर रहमान साहब जी।
1: हम सबको वो खुशी मिले जिसे हम सबको इच्छा है। दिनों दिन बढ़ता जाए कारोबार, परिवार में बना रहे स्नेह और प्यार। होती रहे सदा हम पर धन की बौछार। दिल से दिल मिलाते रहिए, हमारे घर आते जाते रहिए। सुनने वालों, आपके लिए यहाँ पर एक फिर सुंदर सा गीत तैयार करके रखी हूँ, जरूर से आप सुने।

उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के आवाज़ में ये गीत तो नहीं है, पर उन्हीं के गाए हुए बट ये एक ऑफर किया गीत है जो यहाँ से हमने सुन ली है बुखारी के आवाज़ में।

हाँ, हमें तो जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों, काली काली जुल्फे। कबूल बुखारी जी की आवाज में यहाँ से हमने सुने सुंदर सा सूफी सॉन्ग। एक छोटा सा जोक यहाँ आपके लिए, लगे रहो दिन रात ऐसे ही मोबाइल पर। मोबाइल के बारे में एक जोक है, लगे रहो दिन रात ऐसे ही मोबाइल पर, कुछ मिले ना मिले, कुछ मिले ना मिले, एक दिन चश्मा जरूर मिलेगा। और एक ये भी है धोखा के बारे में, एक छोटा सा जोक धोखा के बारे में कि पता है क्यों, पता है हम धोखा क्यों खाते हैं, पता है हम धोखा क्यों खाते हैं, क्योंकि हम उसे पी नहीं सकते। आपको बहुत सारा प्यार पेश किया जाता है अभी का फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से।

जी तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं, जी हाँ बिल्कुल नहीं। अलका याग्निक और हरिहरन जी की आवाज़ में सुने दिल विल प्यार व्यार। कहते हैं कि छल कपट और पाप उतना ही करना चाहिए जितना भुगतने की शक्ति हो, क्योंकि मेरे दोस्तों कर्म किसी को भी नहीं छोड़ते।

सुंदर से इंस्ट्रूमेंटल आपके लिए। आहिस्ता चल ए जिंदगी, आहिस्ता चल ए जिंदगी, आहिस्ता चल। अभी कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, आहिस्ता चल। कुछ फर्श निभाना बाकी है, रफ्तार में तेरा चलने से, रफ्तार में तेरा चलने से कुछ रूठ गए, कुछ टूट गए। रूठों को मनाना बाकी है और रोटों को जो रोते हैं उनको हंसाना बाकी है। आहिस्ता चल ऐ जिंदगी, आहिस्ता चल। कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए। कुछ हसरतें अभी अधूरी है, कुछ काम भी और ज़रूरी है। जीवन के उलझे पहेली को पूरा सुलझाना बाकी है, जीवन के उलझे पहेली को पूरा सुलझाना बाकी है। आहिस्ता चल ऐ जिंदगी, जब सांसों का थम जाना है फिर क्या खोना क्या पाना है। आहिस्ता चल ऐ जिंदगी।

सुरमणि अग्नि वर्मा के कॉफर किया ये सुंदर सा सितार इंस्ट्रूमेंटल आपके लिए पेश किया जाता है। यहाँ से हम सुनेंगे अल्ताफ राजा के

एक दर्द सभी को होता है। फिल्म का नाम ना बाबा अल्ताफ राजा की आवाज में यहाँ से हमने सुन ली है। चाहे कितने भी ऊंचा पद प्राप्त कर लो, चाहे कितने भी बड़ी डिग्री हासिल कर लो, अगर बोलने की तमीज़ और इंसानियत नहीं सीखा तो वो इंसान अनपढ़, वो इंसान अनपढ़ के बराबर है।

प्यार है, हाँ यही तो प्यार है। दिल संभल जा सरा, दिल संभल जा सरा, फिर मोहब्बत करने चला। ये दिल जो है ये क्या संभलने वाला है, ये दिल जो है कभी नहीं मानता है और दिल भी कभी नहीं भरता है।

लिए दिल को चाहे मनाओ ये कभी नहीं मानते हैं दोस्तों। छूकर मेरे मन को किया तूने किया इशारा, अमिताभ बच्चन का फिल्म है और अमिताभ बच्चन दोस्तों एक बड़ा स्टार है, आज तेलुगु फिल्मों में काम करते हैं और कई तरह के प्रोग्राम उसका भी टेलीविजन पे रहता है। तो अमिताभ बच्चन का उम्र फिर तक यार इस दी से बने रहो 11 अक्टूबर 1923 तक में इनका पैदाइश हुआ और उसी का फिल्म का एक सॉन्ग मैं चॉइस करके रखा हूँ और फिल्म याराना है और फिल्म याराना का गीत है छूकर मेरे मन को, किशोरदा के मीठी आवाज़ में आप सुनेंगे।

आप ही का हैप्पी स्टेशन फाहन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। अक्षय कुमार और करीना कपूर या करीना खान दोनों ने काम किया है फिल्म एक दिल रुबा है। पद्मसी उरित्रा इनके आवाज़ में आप गीत को सुनेंगे, दिल करता है तुझे अपना बना लूँ।

ये दिल का कहानी, दोस्तों मैं दिल की कहानी नहीं लेके आया, मैं दिल का लय सभी ने बनाया, लेकिन हर एक गीत जो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ तो दिल आ जाता है। ये दिल पर क्या गुजरता है आप जानते हैं, और ये दिल जो है कभी नहीं मानते हैं। जैसे मैंने कहा शुरुआत में, ये दिल तो दिल है लेकिन कभी नहीं मानते, छोटा सा दिल है। जब प्यार हो जाता है तो चाहे प्यार मिट जाता है, लेकिन ये बात दिल में जाकर समा जाता है और हमेशा के लिए दिल में रहता है। ये दिल से कभी नहीं निकलता है, दिल तो है दिल।

दिल तो है दिल, दिल का एक बार क्या चीजे, हम यार है तुम्हारे अलका याग्निक उदित नारायण दोनों के आवाज़ में आप सुनेंगे। हाँ मैंने भी प्यार किया फिल्म का नाम है, ट्वीट में फिल्म रिलीज।

मैंने ही प्यार किया है। फाहन हिंदुस्तान रेडियो, आप सुन रहे हैं राजन के साथ सासों की जरूरत है। आज की फिल्म का नाम है मिस्टर सानू।

लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे बीच मिस्टर एंड मिसेस पेस्टन जी अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मना रहे हैं। लेट्स गिव देम अ बिग हैंड।

0: आंसू की जरूरत है आशिकी के लिए। ये आशिकी क्या होता है आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो कभी जब मैं शुक्रवार के प्रोग्राम करूँगा तो आप 4 और 5 के बीच तार करके और पूछ लीजिए, तो मैं आपको जरूर बता दूंगा कि आशिकी क्या है, क्या होता। आपको मालूम है भैया जॉनी की आशिकी क्या है?
1: हाँ भैया, आशिकी बहुत खराब का बीमारी है।
0: पैरासीटामोल से अच्छा हुई,
1: पैरासीटामोल से अच्छा है भैया,
0: झाड़े के पड़ी।
1: हाँ अब देखो भाई, ये द्वारका बीते हुए दिनों में सुरीनाम देश में एक लड़की था तक यार के यही आशिकी के पर बाद में फंस के और अपन वो तो जाए के कुरा थे जिस मक्का और वो तो ले आए के गिर गए पानी में, गिर ना गए सर मोड़ ब्रेक करी so. तो ही बता ले आशिकी भैया द्वारका जान ले ले तो द्वारका आप कभी किया होगा कि अभी करते हो गए?
0: ये काम तो किसने नहीं किया, सबको ये काम किया,
1: किया नहीं हो जाता है।
0: वो जैसे जैसे तू बोले बीमारी है आजकल।
1: हाँ वो बीमारी है। हाँ। लोग भाई राजन, दुनिया पे लोग को एक चीज से बहुत डरना चाहिए और वो है प्यार करना।
0: या
1: प्यार बहुत अच्छा
0: या प्यार हो जाता है,
1: प्यार हो जाता है।
0: या या
1: बोले प्यार किया नहीं जाता है।
0: वही बात, वही बात। भैया जोड़ी दंग केवल।

चार मिनट रह गया है 6 बजने में। प्रोग्राम यहाँ से मैं समाप्त करता हूँ, आशा उम्मीद के साथ कि आप सभी को प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। मिस्टर जर्नी नंबर वन आ गया स्टूडियो में, बगल में बैठा है दोस्तों, और अभी उसका प्रोग्राम 6 बजे से आप सुनेंगे। खास करके जो न्यूज़ ब्रेक था आप जरूर सुनते रहना। वीकेंड है, आप सभी को प्यार भरा वीकेंड, हैप्पी वीकेंड पेश हो। खुशबू रहेगा, फूल खिलेगा, जिंदगी रहेगा, फिर मिलेगा आप सभी को एक सुहानी रात।

यहाँ से आप सुनेंगे सितारों का सफ़र। आज का प्रोग्राम है सितारों का सफ़र, में मैं गसल का गायक या गसल का फनकार पंकज उदास के बारे में कुछ बातचीत करूँगा। पंकज उदास पैदा हुआ सीफिक मैं इन फैक्ट राजखत में, परिवार बॉम्बे से बॉम्बे चला आया और म्यूजिक अकादमी में तबला बजाने को सीखा पंकज ने। पंकज को बचपन से गाने का बहुत से शौक था। मास्टर नवरंग से ये संगीत सीखा। उषा खन्ना ने पंकज को फिल्म कामना में गाना गाने का एक मौका दिया, लेकिन ये फिल्म कामयाब नहीं हुआ तो पंकज ने फैसला किया कि वो फिल्मों में बहुत कम काम करेगा और पंकज शुरुआत किया गजल गाने में और उर्दू भी सीखा। बड़ा भाई ने कहा पंकज से कि अगर गजल में कुछ करना है, कुछ करना चाहते हो तो मेहंदी साहेब और बेगम अख्तर को सुनो। पंकज साहेब ने बहुत से या पंकज जी ने बहुत से गजल पेश किया है, तो बहुत से गजल गाया है और सभी गजल में से एक गजल जो मुझे बहुत पसंद है, तेरी निगाहों से, पंकज उदास की आवाज़ में।

गजल का फनकार पंकज उदास कनाडा को चली गई और वहाँ जाकर उन्हें महसूस हुई कि यहाँ के लोग को हिंदुस्तानी म्यूजिक कितना पसंद है। फिर पंकज ने मन बना लिया कि ये अपना देश में अपना नाम करेंगे और काफ़ी टाइम गजल सीखने के बाद ये वेसन में काफ़ी गजल के कॉन्टेस्ट किए नीखंतिंग तख्तक और नीखंतिंग तख्तक में अपने पहला गजल के आलबम तैयार की जिसका नाम था आहट। फिर उसके बाद वो एक गाना तैयार की एक गजल और वो था चिट्ठी आई है। इस गाने से ये तुरंत पॉपुलर हो गया दोस्तों। एक बार पंकज उदास एक बेनेला से फ्लिक था तो एक शो देकर घर जा रहा था और जो फ्लिक थे जब प्लेन में बैठा तो राज कपूर जी वहाँ प्लेन में बैठा था तो राज कपूर के जाकर उनका पाँव पकड़ लिया पंकज। तो राज कपूर ने कहा नहीं नहीं पंकज जी ऐसे मत करो आप एक बड़ा गायक हो। तब पंकज ने कहा नहीं नहीं मैं कोशिश करता। तो राज कपूर ने कहा आपका गीत जो है चिट्ठी आई है वो एक हिट एक बड़ा सॉन्ग हो गया है। तो वहाँ पर जाकर पंकज उदास को महसूस हुआ कि कितना तारीफ किया जा रहा है मेरा ये गीत पर। और ये गीत दोस्तों मैं सोचता हूँ ये गीत हमेशा पॉपुलर रहेगा, इसलिए गीत में जो बातें हैं मैं गीत को सेलेक्ट करके रखा लेकिन आज नहीं पेश करूँ इसलिए कि गीत बहुत लंबा चौड़ा है। एक दूसरा गजल मैं आपके लिए चुन के रखा हूँ और मैं भी पेश करूँगा। तो चिट्ठी आई एक पॉपुलर हिट हुआ। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ गजल गाया जाता था वहाँ वहाँ पंकज उदास हमेशा उपस्थित होते थे और उनका गाना भी हमेशा चलता था। पंकज उदास की आवाज़ में एक दूसरा गजल आप सुनेंगे। पंकज उदास दोस्तों आप जानते हैं वो सुनांदेश भी अपन शो दिया है और हॉलांदेश में भी आकर अपन शो कितने कई बार मैं सोचता हूँ दो बार वो सुनांदेश गया है।

क्या तारीफ है, एक तू ही धनवान गोरी, बाकी सब कंगाल। गसल का फंकार पंकज उदास को पद्मश्री का पद्म मिला दिया, ट्रेडिशन शास्त्र में पद्मश्री का ऑनर स्काइडिंग। और पंकज उदास का पिता का नाम, उसका पिता का नाम थे खुशीदास उदास और माँ का नाम थी झूठी झीती झीती बन। पंकज को दो भाई है जिन्हें जिनका नाम है मनहर उदास, वो भी एक गायक है, और दूसरा भाई का नाम है निर्मल उदास, एक गजल गायक, और बीबी का नाम है फरीदा उदास। इन दोनों को दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, जिनका नाम है नयाब उदास और रेवा उदास। दोस्तों, दुख की बात यह है कि 26 साल फरवरी सन 2024 को 72 साल के उम्र में पंकज उदास की मृत्यु हो गया, दुनिया को छोड़ चल गए। और बहुत दुख की बात है दोस्तों, पंकज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम जब लिया जाएगा बड़ी गर्व से लिया जाएगा। उसका दाह संस्कार परिवार रिश्तेदार के अलावा फिल्म इंडस्ट्री के तमाम भी सितारे मशहूर थे वहाँ पर।

सितारों का सफर यहाँ से समाप्त होता है। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। महेंद्र कपूर का लाइव सॉन्ग आप सुनेंगे।

महेंद्र कपूर, पद्मश्री महेंद्र कपूर की आवाज़ में बदल जाए अगर माली। दोस्तों, जॉय मुखर्जी सायरा बानू के साथ फिल्म शागिर्द में काम किया। आप ये फिल्म देखे होंगे तो इस फिल्म एक बहुत जोक फिल्म था दोस्तों, इसमें बहुत हंसी था और जॉय मुखर्जी और सायरा बानू अच्छी तरह से इस फिल्म में काम किया। और इसी फिल्म का एक सॉन्ग है नाइटिंगेल, लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुनेंगे।

और आशा पर सायरा बानो दोस्तों दिलीप कुमार का बीवी सायरा बानो के साथ फिल्म शागिर्द का ये सॉन्ग अभी आपने सुना। धर्मेंद्रा दोस्तों धर्मेंद्रा और अपन दूसरा बीवी, जी हाँ लोग कहते हैं दूसरी बीवी, तो मैं कहा दूसरा बीवी, अपन दूसरा बीवी हेमा के साथ वो काम किया फिल्म चरस में। अभी गीत के बाद मैं कुछ धर्मेंद्र के बारे में आपसे बताऊंगा।

0: दोस्तों धर्मेंद्र, आप सभी जानते हैं कि धर्मेंद्र का तबीयत जो बिगड़ा, तो धर्मेंद्र अपना दयाद जो है, जितना धन दौलत है, वो अपन दो बीबियों के अंडर बात दिया दोस्तों। तो एलक है, एलक मीन्स दोनों बीबियों का पूरा बात दिया। और धर्मेंद्र का दौलत जो है 560 करोड़ रुपए। तो धर्मेंद्र अपना पहला पत्नी और हेमा मालिनी को दोनों को 200 करोड़ दिए। तो हेमा मालिनी को 200 और अपने पहले पत्नी को भी 200 करोड़। और अपनी चार बेटियां, धर्मेंद्र को चार बेटियां है, दो हेमा के साथ और दो बेटी है प्रकाश कौर के साथ। तो चारों बेटियों को 107 करोड़ दे दिए और 60 करोड़ रुपये। और अपना फार्म जो है, अपना फार्म हाउस जो है, वो दोनों अपने ये अपने दोनों पत्नियों में बांट दिए, ये लगा। और बच्चे सोनी दियोल और बॉबी दियोल दोनों को अपना प्रोडक्शन हाउस दे दिया। और धर्मेंद्र को कई शहरों में रेस्टोरेंट है, उसका कीमत लगभग 5 करोड़ है। और दोनों भाई के हिस्से में ये सभी रेस्टोरेंट जो है, ये दोनों भाई के हिस्से में आया। और धर्मेंद्र को चार बड़े बड़े बंगले है जो अपने दो बीबियों को बात दिए है दोस्तों। तो देखिए धर्मेंद्र अपन दो बीबियों को कितने प्यार करते हैं कि लड़कन को कम दिया है और अपन बीबी को ज़्यादा दिया है। इसलिए कि बीबी से तो लड़का होता है ना, जब बीबी नहीं है तो लड़का कैसे होगा। जॉनी तू क्या सोचे है, सही बात है कि नहीं
1: भैया? जब मसीह ना है वो तो कैसे चले।
0: वही बात है जॉनी, थैंक यू वेरी मच।

अफ्रीका हैप्पी स्टेशन फा हॉन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। प्रोग्राम गीतों का संगम में चटनी सोका आप सुनेंगे दोस्तों। एक बार मैं कहता हूँ चटनी सोका, फिर भी छोटे में मैं कह देता हूँ मिक्स म्यूजिक, जिसमें हर एक तरह के म्यूजिक मैं आपके लिए पेश करूँगा। मिस्टर राम नारायण या रीमोन नाम राम माफ के रीमोन राम नारायण के आवाज में नकातिंग नकाटिंग नकसानी

मिस्टर तसीफ बक्स, और तसीफ बक्स आपके लिए पेश करेगा किसरिया एक्स काउंटडाउन।

परिवार दोस्तों, ये मोक्सी अलैसी नहीं, ये मिसिक मोक्सी है और मिसिक मोक्सी में ओल्ड चटनी पार्टी फॉलो में इनसे मैं निकाल कर आप तक पेश करता हूँ।

फ्लोर बिना चटनी कैसे बनी? मैं सोचता हूँ आप सभी को मालूम है कि ये चटनी कैसे बनेगा। हाय शोली ग्याल, शोली ग्याल तू का करे है?

बिया और रूबिया। दोस्तों कार्तर कड़मा अनु ताकी मिनो लोबियू, हा सुमा ताकी मिनो लोबियू, मिलो बयू थ्रू।

मिक्सी मोक्सी पोकू चला है दोस्तों, अब की बार दो दो दो दो पोपो बिलैया टोके काटी, बच के रहना दोस्तों खरबोट लिए भी।

ये सही बात है, सभी बात आप सूरज और फूलों से जरूर सीखना दोस्तों, जगना और जगाना। राजा सविता सिंह की आवाज़ में।

टोन एक सविता सिंह के आवाज में भी आपने सुना। विशाल हीरा तैयार हो गया है दोस्तों, और विशाल आपको फरमाएगा भैया टेक लड़की।

आपस में देखा तो गए मुस्काए, जरूर मुस्कुराना चाहिए दोस्तों। जब नजर लग जाता है तो वहां पर मुस्कुराने का बात भी होता है। अब की बार इंडियन रॉम शॉप ओल्ड लेडीज

0: Ik ben al zo lang samen met dezelfde frisdrank.
1: Ja, dosto, Indian Rum Shop, abhi aapne suna.
2: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.
3: U luistert naar Hindustani Radio. Radio Fahon.
4: Digitale radio. FahonFM.nl.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. 8 leerlingen van een Keniaanse kostschool voor meisjes waar gisteren een dodelijke brand woedde, zijn volgens de politie aangehouden. De brand brak rond 1 uur in de nacht uit in het midden van de slaapzaal. De politie verdenkt de 8 van brandstichting. Bij de brand zijn 16 leerlingen omgekomen en raakten er bijna 80 gewond. De VN-chef voor mensenrechten roept op tot het beter waarborgen van de rechten van kinderen online. Zowel landen als bedrijven moeten volgens hem meer doen om hen te beschermen tegen de risico's die ze op internet lopen. Bijvoorbeeld wat betreft privacy en hun mentale gezondheid. De VN-organisatie komt daarom met een aantal richtlijnen. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het OM eist ook 62.000 euro van een 34-jarige neef van Promes. Dat meldt de officier van justitie in de rechtbank in Amsterdam vandaag. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer.
5: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
7: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736322447 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.
4: दोस्तों प्रोग्राम कार्यक्रम की शुरुआत संजीव से करते आ रहा हूं वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ फ्रॉम द मूवी ललकार 1972 कंपोज्ड बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं सुरो का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी क्या गा लो मुस्कुरा लो महफिली सजा लो क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो ये कब टूट जाएगा ये कब समाप्त हो जाएगा ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है इसलिए हम लोग तो आप सभी से यहाँ से सदियों से यही कहते आ रहे हैं कि हैप त्यू नाश्ता लीफ हैं कंधे से कंधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो खुद को आगे को बढ़ाना है देश को भी आगे को बढ़ाना है कौम को भी आगे को बढ़ाना है तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक प्रोग्राम गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड संगीतकारों का दास्तां नामक कार्यक्रम काफ़ी दिनों से मैं चला रहा हूँ और कुछ नगमे रह गया है ये महान संगीतकार अरे यार 50, 60, 70 En wo itna behtareen sangeet diya hai ustadon ka ustad Shri Madan Mohan ji ne hamare Bollywood film industry ko, jo hum log sadiyon tak sunte rahenge lekin man kabhi nahi bharega. Aur uske baad aap sunenge sirf nagmaen jin movies mein महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर दिलीप कुमार जी ने काम किए हैं. बीच में कुछ ज्ञान के बातें हैं, शेर शायरी है. तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना. फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो आप सभी को एक शुभ दिन प्रकट करते हैं. मैं धीर फील लेस्टर प्लेजीर के साथ रफी साहब.

गालो मुस्कुरालो महफिली सजालो, हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत। तो हमारे प्रिय प्रिय साथियों, सज्जनों, भाइयों और बहनों, आज का इस हसीन प्रोग्राम का शुरुआत मैं कर रहा हूँ द ग्रेट मदन मोहन जी के कुछ बनाए हुए नगमे और सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला द हार्ट थ्रब ऑफ मिलियंस, द माइटी मुकेश जी के मधुर आवाज में आप सुनेंगे एड फिल्म संजोग 1961। एक जबरदस्त कंपोजिंग ये महान संगीतकार मदन मोहन जी का भूली हुई यादों, या ये एवरग्रीन सॉन्ग भी ये महान संगीतकार ने बनाया है माइटी मुकेश जी के लिए। मिलके सुनते हैं स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय सुनने वालों के नाम।

कंपोजिंग बाय मैस्ट्रो मदन मोहन, और आप सभी को सुनाया लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला द हार्ट थ्रब ऑफ मिलियंस, द माइटी मुकेश जी के मधुर आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। आई द फिल्म संजोग निखरी एन एंसेस्टर, जबरदस्त शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान रख चुका हूँ आप सभी को सुनाने के लिए प्लेयर में यारो। और इस बार ऐड मूवी एक मुट्ठी आसमान 1973, संगीतकार का शहिनशाह और बादशाह द ग्रेट ग्रेट ग्रेट किशोरदा के मधुर आवाज में अति सुंदर बयान आप सुनेंगे, जो बड़ी खूबी के साथ सजाया है ये महान संगीतकार जिनका नाम हमेशा अमर रहेगा हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में, द ग्रेट मदन मोहन जी का।

0: द ग्रेट किशोर दा के मधुर आवाज में ये अति सुंदर शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान आज श्रोताओं ने सुना। आई डू फिल्म एक मुट्ठी आसमान 1973 कंपोज बाय द जीनियस म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन साहब। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चून है गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड संगीतकारों का दास्ता नामक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। काफी दिनों से स्पेशल चल रहा है महान संगीतकार डिग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर प्रोड्यूसर सिंगर एक्टर डिग्रेट मदन मोहन जी। तो कुछ यादें मेमोरीज आप सुनेंगे, खास करके क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के मधुर आवाज में, और कुछ बातें भी खुद मदन मोहन साहब जी ने आप सभी को सुनाने वाला है। मिलके सुनते हैं मेमोरीज ऑफ लता जी एंड मदन मोहन।
1: मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि बहुत अरसे के बाद आज फिर आपसे मुलाकात हो रही है। जो गीत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो सब सुनीले हैं, हिंदुस्तानी हैं और जज्बाती हैं। मैं ये समझता हूँ कि हर फनकार का जज्बाती होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसमें इंसानियत का जज्बा नहीं है तो वो सही फनकार नहीं हो सकता।
2: एक याद दिलो दिमाग पर यूं छाई हुई है जैसे कल की बात है। 1948 में मास्टर गुलाम हैदर साहब ने मुझे एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया। मेरे साथ जो साहब गाने वाले थे उनका नाम था मदन मोहन। ये भी पता चला कि वो फिल्मिस्तान के मालिक राय बहादुर चुनीलाल जी के बेटे थे। भाई और बहन का गीत था। रिकॉर्डिंग के बाद मैंने खुश होकर मदन मोहन से कहा, आप बहुत अच्छा गए। बोले, हाँ ठीक रहा, वैसे मैं म्यूजिक डायरेक्शन शुरू कर रहा हूँ, आप इस फिल्म में जरूर गाइएगा। म्यूजिक डायरेक्टर की हैसियत से

0: कारणवश मैं उस फिल्म में नहीं गा सकी। मदन मोहन इस बात पर बहुत दुखी हो गए, मुझे घर ले गए। बोले, पहली बार जब हम मिले थे तो हमने भाई बहन का गीत मिलकर गाया था, आज से तुम मेरी बहन और मैं तुम्हारा मदन भैया। उस दिन से आखिरी दिन तक मदन भैया ने राखी के बंधन को यूं निभाया जैसे वो सगे भाई थे।
1: मदन भैया के लिए मैंने कई फिल्मों में गाया,

रे बातें कुछ मेमोरीज आप श्रोताओं ने सुना मेलोडी क्वीन लता जी के मधुर आवाज में, और कुछ बातें खुद मदन मोहन जी ने आप श्रोताओं को सुनाया। एक बयान जो मैं आप श्रोताओं को सुनाने वाला हूँ, और वो खास करके मेरे दिल के बहुत करीब है, और सुनाने वाला है आप सभी को एक बार फिर। लाखों करोड़ों का दिल चुराने वाला द हार्टथ्रब ऑफ मिलियंस द माइटी बुकेश जी कि हम चल रहे थे वो चल रहे थे। ऐड फिल्म दुनिया ना माने 1959 महान लेखक राजेंद्र कृष्ण जी के अल्फाजे, संगीत है महान संगीतकार द ग्रेट मदन मोहन जी का। मिल्क सुनते हैं स्पेशल।

कुदरत का है करिश्मा एक दूसरे से मिलना, दुनिया के सरसमी पर किस्मत को आजमाना। ये प्रेम का जहाँ है हर किसी से भूल जाना, आपस से है मोहब्बत, आपस से है मोहब्बत ये धर्म है सिखाता। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार, आदाब, बरसो। हरी को देखता हूँ तो 4:03 बीत गया है, पावन हिंदुस्तान रेडियो पर आप चुन है, शुक्रवार है। महीना भी चला जाएगा, ऐसे मान में हम सब कदम रखेंगे। साहब यूसुफ सामने बैठा हुआ है, अभी हमें कड़ी शेयर कर ले। शुक्रवार की तरह दोस्तों यूसुफ साहब हमारे साथ देता है और आज भी सामने बैठा हुआ है। परिवार घर में दुख है, दुख में हम साथ देते हैं, जहां पर खुशियां है बहुत से बधाई। प्रोग्राम गीतों का संगम में अब से लेकर 4:30 मिले जुले के गीतों के साथ मैं आपका दिल बहलाऊंगा। उसके बाद 4:30-5 के अंदर आइटम बयान जो रहेगा वो यूसुफ खोज के रखी रहे दोस्तों, अब वो है दिल। दिल बड़ा होता है, छोटा भी होता है, प्यारा भी होता है, भी पागल भी होता है, फिर भी दिल तो दिल ही है।

पूरे 6 बजे स्टूडियो में मैं रहूंगा, उसके बाद मिस्टर जॉनी नंबर 1 का प्रोग्राम आप सुनते रहना। एक काम जो आपको रेडियो के सिरे कराना है, कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 9 5 2 2 4 6। अगर आप आइटम के समय पर एक गीत सुनना चाहते हो तो 9 5 2 2 4 6 या 9 7 3 7 2 2 0 0 पर आप तार कीजिए। आफ्रिका हैप्पी स्टेशन फाह ऑन हिंदुस्तान रेडियो, आप सभी को एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम। वीकेंड भी मोड़ पर है दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा वीकेंड, हैप्पी वीकेंड पेश हो। जब शुक्रवार है तो आप जानते हैं हॉलैंड देश के सबसे बड़ा बाजार जो है हॉलैंड से हाक्स मार्ग जो है डेन हाग शहर में अभी खुला हुआ है। आप बाजार पे चल रहे हो या बाजार जाना चाहते हो तो आपसे मैं ही कहना चाहता हूँ कि अपन एकदम जो है सरा संभाल के रखना।

दोस्तों, ऑनवेयर और बारिश के कारण कैनेमी सैदन और ओसन में दिया है कोड खेल। तो अभी मैं जब सीजन से बाहर देखता हूँ तो बारिश हो रहा है और अभी तो बिजली नहीं चमका है, फिर भी कोड खेल दिया गया है सैद और ओस्त के ओर। ऐसा रहेगा मौसम, देखा जाए वास्तव में कोड खेल है ऑनवेयर होता है या नहीं। फिर भी मैं चुन के रखा हूँ एक दूसरा सॉन्ग और उस सॉन्ग के बाद हम सब आइटम की ओर चलेंगे। और गाना बोल है सास सासों का चलना।

यस यस यस, घड़ी को देखता हूँ तो 4:30 का वक्त है और आइटम को शुरुआत में करूँगा। दोस्तों तुरंत दिल दे के देखो, क्या बात है, जब दिल दिया है तो देखना भी पड़ेगा। अजय दिल नहीं दिया तो कुछ नहीं दिया दोस्तों, इसलिए दिल मिलता है बांटने को। जी हाँ, इस तरह से जब अगर आप दिल बांटेंगे तो दुनिया भी बढ़ेंगे, प्रेम बढ़ेंगे, प्यार भी चारों बगल रहेगा। साहेब योग सेतु के तरफ से प्यारी प्यारी मासुका सिला के

0: देखे देखो डील देखे देखो साहब यूसुफ सेठू की ओर से प्यारी प्यारी मासुका सीला के वास्ते बड़े प्यार और दुलार से सॉन्ग पेश था। दूसरा सॉन्ग जो आप सुनेंगे प्रोग्राम में, दिल की आरजू थी कोई दिल रुबा मिले, हैंगलो में रहता श्रीमान चांदर रघुनंदन और उनका जीवन साथी नैली, दोनों के वास्ते।
1: ओके,

0: दिल की आरजू दिल रुबा मिले हैंगलोक रहने वाला श्रीमान चांदर रघुनंदन उनका जीवन साथी नैली दोनों के वास्ते ये सॉन्ग पेश था। दोस्तों नीदरलैंड से अलफ ताल का सेलेक्सी जो है त्रिनर रोनाल कुमान सेलेक्टेड किया है नतान अकी को, ब्रायन ब्रॉबी, मेम्फिस डेपाई, फिरखेल फान डाइक, डेंसल डंफ्रीज, मार्क फ्लैकन, कोडी खापको, रायन ग्राफनबर्ग, जोरेल हाटो, यान पॉल फान हेंके, फ्रेंकी दे योंग, जस्टिन क्लेफर्ट, टीन कोपमेयर्स, नोआ लंग, डोनियल मालन, चानी रेंडर्स, रॉबिन रूफ्स, मार्टिन द रोन, क्रेसिको सिमरफिल, Christel, Jurien Timber, Quentin Timber, Mikey van de Ven, Bart Verbruggen, Wout Weghorst और Mats Wiefers, ये सभी खिलाड़ी सेलेक्टर हुआ। आप जानते हैं दो हफ्ते बाद ये वीका का शुरुआत है दोस्तों, और रोनाल्ड कुमान जो ट्रेनर है वे सभी को अभी से सेलेक्ट कर दिया है। जितना स्पेलर के नाम मैंने दिया ये सब जाएगा वीका अमेरिका या मैक्सिको या कनाडा, वहाँ पर खेल खेलने को। और नीदरलैंड्स एलफ साल जो है दोस्तों ग्रुप एफ में मुकाबला करेगा, और ग्रुप एफ में पहला खेल है मैं सोचा 20 यूनिक होगा और वो जापान से खेलेगा। यहाँ तक था छोटा सा स्पॉट ब्रेक। एलडीएफ में फुटबॉल का मुकाबला नहीं है, और आने वाले दिनों में वीका के बाद यूरोपा लीग और यूईएफए या और शनिवार को है चैंपियंस लीग का मुकाबला,
1: पारी
0: या पारी अर्सेनल दोनों खेलेंगे। और मैं सोचता ये खेल फ्रंक तुर्कैया में खेला जाएगा, तो
1: फिनाला
0: या फिनाला तुर्कैया में खेला जाए, तो वो आसान सौंदा को है। उसके बाद
1: सातदा
0: उसके बाद वीका का शुरुआत हो जाएगा दोस्तों। दिल करने लगा है प्यार तुम्हें, श्रीमान आंद्रे राजकुमार के लिए।

करने लगा है प्यार तुम्हें श्रीमान आंद्रे राजकुमार के लिए स्पेशल ये सॉन्ग पेश था आइटम में अब की बार दिल ने फिर याद किया राफी साहेब और सुमन कल्याणपुर साथ साथ मुकेश ये सभी के आवाज़ों में आप ये सॉन्ग सुनेंगे और ये गीत है श्रीमान मून जी भोट और उनके जीवन साथी माला दोनों के लिए

ने फिर याद किया का सॉन्ग अभी श्रीमान मून जी बहुत उनका जीवन साथी माला दोनों के वास्ते मैंने पेश किया। एक आखिरी सॉन्ग चलेगा आइटम में और वो है दिल जो ना कह सका वही रास दिल में, भीगी रात फिल्म का नाम है।

री राजदार कितना है तुमसे प्यार मुझे, जो सो शामी कपूर एफर्क्रीन सॉन्ग है। आप जानते हैं पद्मश्री राफी का जितना गाना है, सबसे ज़्यादा गाना जो है राफी साहब का, वो गाना शामी कपूर ने एक्ट किया। आने वाला हफ्ता उसके बारे में मैं आपसे जरूर बताऊंगा।

सुबह स्नान में भी कुछ देर के बाद है, एक निग्न सी 21 साल का आदमी स्कूटर से गिरा है और उनका तुरंत उनका मृत्यु हो गया है। लिखा गया है कि एक मोटरकार सामने से जा रहा था और मोटरकार के ऊपर जाकर गिरा है और इस अंकल के कारण उसका मृत्यु हो गया है। बड़ी दुख की बात है दोस्तों, निहन सिर्फ 10 साल का आदमी था। मेरा प्रेम हिमालय से ऊंचा, सागर से गहरा प्यार मेरा।

मेरा प्रेम हिमालय से ऊंचा और सागर से गहरा प्यार मेरा। माइटी मुकेश के मीठे आवाज में भी आप ये सॉन्ग को सुना। अब की बार आड्रे बर्मन का म्यूजिक है और हसीनों का पुजारी किशोर कुमार। हे

शाम ये शाम मस्तानी मध्य होश पिए जा। क्या बात है दोस्तों, वास्तव में शाम मस्तानी है और बारिश का मौसम है, फिर कोड और आय दिया गया है, कैनमी कोड और आय दिया है साउथ हॉलैंड के आसपास। आओ हसूर तुमको सितारों मिले चले। आशा जी, आशा भोसले के आवाज़ में फिल्म किस्मत का ये सॉन्ग।

0: आओ आओ हजूर आओ सितारों में ले चलो, मिस्टर फिदेल आ गया स्टूडियो में। दोस्तों आप जानते फिदेल के हैं यूसुफ, तू जाने फिदेल के हैं?
1: फिदेल कास्ट्रो?
0: ना ना ना फिदेल आया था तो स्टूडियो में, मिस्टर फिदेल पधार दिया स्टूडियो में दोस्तों, अभी बैठेगा। आपकी बार गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल, फिल्म गाइड का सॉन्ग, देवानंद एंड वहीदा रहमान दोनों काम किया फिल्म में।

गाता रहे मेरा दिल, ये दिल जो है न सिर्फ रोता है ये गाता भी है। फर्क ही पड़ता कि सुनाई नहीं देता, किसी को मालूम नहीं होता है कि क्या दिल पर पड़ता है। जिसका दिल है वही जानते हैं क्या खुशी है या गम, सिर्फ अंदर छुपा रहता है। दोस्तों ये दिल का कहानी है, और आप जानते हैं दिल, मैंने शुरुआत में कहा दिल जो है वो पागल भी होता है। तो दिल के बाद छोड़ो, अब की बार हेलन के पारी है, आज जाने जा। आप सोचते हो कि हेलन सिर्फ आशा भोसले की सॉन्ग एक किया है, प्लेबैक किया, नहीं नहीं, ये गीत लता ने गाया है।

जाने जा आप ही का हैप्पी स्टेशन फाह और हिंदुस्तानी रेडियो, आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम, पल पल दिल के पास तुम ही तो रहते हो। फिर दिल के बात आ गया गाना में दोस्तों, ये दिल चारों बगल रहता है और दिल के बिना तो जिंदगी भी नहीं है। किशोर दा के आवाज़ में।

रहती हो पल पल दिल के पास, तुम ही तो रहते हो और कौन हो सकता है। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। लेकिन उससे पहले हेलन का मौका एक बार फिर है। माई हार्ट इज बीटिंग।

पर काश का कमाल आपने देखा दोस्तों इस फिल्म में, माय हार्ट फिल्म, जूली का सॉन्ग अभी चल रहा था। घड़ी को देखता हूँ तो 7 मिनट रह गया है 6 बजने में, सिर्फ मिनट इन फोर सेस। मिस्टर जॉनी नंबर वन आ गया स्टूडियो में, अभी 6 बजे के बाद प्रोग्राम ओफलेगा, खासकर उसका न्यूज़ ब्रेक तक जो है आप जरूर सुनते रहना। छूकर मेरे मन को, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, मन के बाद आ गया।

दोस्तों हम चलते हैं एक मस्त भरी गाना के ओर, लता जी और राजकुमार। और इस फिल्म बहुत पुराना फिल्म है, फिल्म साधना का ये गाना है। लता जी इसमें यानी कि इस गाना को गाया है दोस्तों, और इस गाना आओ मिलकर सुना जाए। कुछ पुराने गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे।

बसी हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, ये एक बहुत मस्त भरी पुराना गाना है दोस्तों, और ये है लता जी इसका गाना, इस फिल्म में यानी कि इस गाना को गाया है। और आगे को हम अगला गाना की ओर बढ़ते हैं और आज हम आप लोग को मस्त भरी गाना से, और जैसे हर हर प्रोग्राम में चलाते हैं आज भी हम चलाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम और आगे चला जाएं, और ये भी एक पुराना गाना है, सब कुछ सीखा, सब कुछ सीखा है हमने, मैं सिर्फ एक ही बात नहीं सीखा है, और वो क्या है भैया, हम तो है अनारी, और ये अगर अनारी होगा तो क्या सीखेंगे, ये बात हम नहीं कहते हैं, मुकेश जी कहते हैं, आओ मिलकर सुना जाए।

सब कुछ सीखा हमने और सिर्फ एक बात नहीं सीखा है, तो वो है होशियारी। दोस्तों होशियारी, हम अपना प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं और मस्त भरी पुराने गाने से आप लोग को आज हम फिर सेवा करेंगे हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। और कहते हैं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे

तमाम रेडियो फाहुन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरिए नाम सस्तिये काले। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश और विदेश के समाचार सुनाना है हमारा काम, यही है हमारे मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

दोस्तों आज है और आज भी आप लोग को हम समाचार सुनाएंगे। अभी आप लोग एक मस्त भरी प्रोग्राम को सुना है हमारा कोलेखा साथी राजन द्वारका से और यूसुफ सेतु से। यहां से हम अपना प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाएंगे। हर शुक्रवार की तरह आज भी हम आ चुके हैं दोस्तों। आज है शुक्रवार निघन तक में घड़ी को देखा जाए तो

14 minuten over 6 हो चुका है। तो आज भी हम फेसबुक के माध्यम से आज भी हम लाइव है हमारे यारो। अगर हमारे प्रोग्राम को आप फेसबुक के माध्यम से और यानी कि देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, श्रवण करना चाहते हैं, तो जाइए रॉय सूरज वाली भी नहीं जॉनी नंबर वन भी हमारा फेसबुक है हमारी जनता।

0: तो दोस्तों बहुत गर्मा गर्म खबर है सुरीनाम की और धर्मेंद्रा आई गए भैया स्त्री। तो धर्मेंद्र वेलकम ब्रदर आ गया है, राज राम लगन भी आकर जुड़ गया हमारा प्रोग्राम में। आप सबके हमारा प्यार भरी प्यार भरी प्यार भरी स्वागत है हमारा प्रोग्राम में जुड़ने को। आप लोग को पता है दोस्तों इस समय पे और यानी कि सोशल मीडिया पे सुरीनाम देश में गम्मच मचा हुआ है। गम्मच मचा हुआ है कारण कि वहां पर भैया यहां हॉलैंड में एक आदमी का नाम बा पॉक्स गजराज, एक बिजनेसमैन है भैया, साकमान है, पैसा वाला आदमी है और ओके राजस्थान फर्स्ट इंटरव्यू करी से और राम राम भाई राज राम लगन। तो ओके इंटरव्यू करी से तो इंटरव्यू पे पॉक्स गजराज का बोली से छोटा रूप में आप लोग को हम सुना दे है हमारे जनता।
1: That was all possible. And that was 4 weeks later. You know, eventually, when both I and the project received approval that it could proceed in Suriname, people were willing to buy land. We weren't going to ask if we could, state land or whatever. The people just wanted to buy. They said, we'll buy it.
0: तो दोस्तों ये नीदरलैंड से फैर से भी है इसमें और बताए गए है कि ये आदमी सुरीनाम गए थे और ये है पॉक्स गजराज और वहाँ पर मांगत रहा एक जबरदस्त ने यानी कि दिल बनावे देशवा खातिन 2000 घर मांगत रहा बनावे पॉक्स गजराज। वहाँ पर दोस्तों रेडियो स्थान फास्ट पे ये जाकर और बताई है और क्या क्या बताई है, बोले जब गैल है वहाँ पे तब बोले जब गैल है तब संतोखी के बोले बैलकरी से कि हम अंगेला 2000 घर बनावे सुरीनाम देश में। हाँ दोस्तों सुरीनाम देश में है तो संतोखी बोले वही समैया पे बोले वही समैया बोले हम ले रहली कहाँ बोले हैं देशवा ले रही हम तो ओके समय न रहा तो एन आंध्र मनीर पे बोले उपठा दे से कहा बोले है का ब्रिंस्वाइक लगे। जब ब्रिंस्वाइक लगे गैल है तो बोले है कि हम कई मिलियार्ड के बोले हम मांगे लिया इन्वेस्टेर करे और वो बोले है का दुई सौ हजार की कितना बोले मांगे है यहाँ पे बोले है घर बनवावे और वो बोले है का तुलन का मांगे तो ब्रिंस्वाइक बोले बोली से कि 2% उबद रखवा के बोले हमारे रिकनिंग वहां पे तू पठा दे हवड़ा कर दे तो बोले तो के हम जितना है बोले हम तो के बोले हैगा सफर खुनिंग रही खल करे मिया स्टॉक पांचवी प्रोसेस स्टॉक तुई होंदत तुई प्रोसेस ऑफ मे रिकने द रीखल एक आले फॉर खुनिंग ई अदमिया बोले है और बोले है न कौ द रिकनिंग बेन टॉक नी सीक अदमिया बोले हम थोड़ा बीमार बाटी कि हम जाबे ई चीज कर 3.5 मिलियन एरो के बातचीत है और ब्रिंस्वाइक बोले 2% बोले हमारा रिकनिंग वहां पे तू धर दे तब बोले कुछ हो ही पाएगा। तो ये रमिया बोले हैगा बोले एक फर्टेल यही सो मेर ओवर बॉक्स कैद की ब्रिंस्वाइक बोले है ओके उका झुका सब बोले भैया बड़ी गाड़ी आ रही दे से रमिया बोले ऐसे बोले तो लो मांगे देश चलाए बोले श्री नामक बोले यूलिसन बनाना बोले बनाना रिपब्लिक है भैया बोले तुन द रेक्टर अनअफांकलक दस्कुंद द क्यूरेटर के बारे में यहाँ बताई से बोले जो एगो अने होटल एगो रहा लियोंस बैरक बोले जो हम किल्ली बाटी तब बोले 9 हेक्टार जमीन भी ऊपर रहा 9 हेक्टार जमीन में से बोले नोतार 3 हेक्टार बोले जगहिया बेच दे जो वारफान बोले हम ऊपर 2 लाख कर ले रही बोले 2 लाख चीज पे बोले सरनाम में बोले हमार 9 हेक्टार जगह जो हम किने रही होटलवा हमें जाना स्टार्ट रहा लियोंस बैरक पे आप लोग के पता है बोले ओमा से तीन हेक्टर बोले नोतारस ले लीजिएगा, बोले हैगा बेच दे इसे, तो बोले के बेची से, तो बोले की तो के बेची से का बोले है अने कॉम्बी मार्क के, बोले उस समय पे तू जाने बड़का स्पॉन्सर के रहा बहुता के कॉम्बी मार्क रहा, तो बोले तू नालिश नकल बोले अते से बनाने रिपब्लिक इन सुरीनाम, बोले हैगा सर नाम में बोले सब कुछ वहाँ बिकाऊ है बहुत इस एनिट में नहीं मार हेड ब्लेव वे एन डी पी यहाँ लिखल है भैया geplunderd, wat valt er nog te verdienen in Suriname? Jeremia Boli zei, bari baard, bolle, we hebben nu een regering, een jaar, hoe kijk je terug naar het echte jaar, die wat we hebben, NDP is, ja, maar je kan het kijken naar haar, to je ze baard, wel is ik er baard mee, bhaiya, en Ronnie Brunswijk, bari naraj hai, en Brunswijk ka bolle hai, over Pox bolle, niet alle Hindustanen hebben die lelijke manieren, vroeger zouden we het in de koffer verbaag hebben gegooid, bolle ab bolle uchi joa hamna karab, ek er mare me Brunswijk ke juka uka, MMP ke gari deise, bolle bandar ander sab banaise bhaiya, to i discriminatie se worto na chahi gebruik kreke, wij zijn multicultureel, je mag niet dit soort dingen gaan zeggen en op bepaalde bevolkings als mensen ons koelie ook noemen, vinden we ook niet leuk. Hoe kan je zeggen dat Juka AP dit en dat is, dat mag meneer en een gajaraatje niet zeggen zo en zo mensen. Ja, wat we hebben, bolle hega uitspraken die Pox gajaraat tijdens een interview bij de Standvaste Radio over hem deed. Hoewel Brunswijk de uitlating zeer ernstig noemt, roept hij zijn achterban op rustig te blijven en zich niet te laten meeslepen door een boosheid. Or wat je hega volgens Brunswijk mogen de uitspraken van één persoon niet worden geteemd als het gedrag of de mening van de hele bevolking was op Hindustan niet terugker is hega. To ik er baare mee bahut lamba chowna bhaiya, to Brunswijk bari naraj hai ki i adamia boli ye go saakman hai, ay saakman gaila Suriname mein investeer kare aur usse mangatra ek er upar se 2% le, da seg meneer Gajraj, wat de waarheid dat weten we niet. Dat is het. Tot Chitra Autaar bhi aakar 7:20 hamara program mein jut gaye hain. Bhaiya Dil Buddhu bhi aa gaya hai aur yahan yahan par kitne log hai jo jud gaya hai hamara samachar aap log bas sunte raho hamare pyare pyare janta Suriname ka samachar hai. देखो भैया क्यूबाने सूरीनाम में बहुत ढेर है भाई, बड़ी क्यूबाने हैं जो आदमी सूरीनाम में हैं, आपके तो पता होगा कि कितना ढेर क्यूबाने सूरीनाम देश में हैं। हम भी सूरीनाम देश में गए भैया, एक ब्रोमफिस क्यूबान के न जाने फरकेर के लायक हमारो तो मार के पेल भागल भाई, गैली सिपाही में नालिश कर ली, सिपाही बोले कहे दौराई के पकड़ ले, हम बोली ओके पकड़ अब छोड़ी फोड़ी भोग दे भैया, हम हुए रह जावे बेतरे हम कुछ ना बोली। जो सो इस सूरीनाम में से अनफेलखेद आज तक कुछ ना भले भैया आन किफ्त कर ली है, वो तो बस कादक हुई ये हमार बोरक औरक सब लाश हुई कि भैया जो हीरो उतरा मार एक वॉस हेलमाल हेलमाल क्लार में से एन क्यूबाने हैप्पी हिल फिन इन सूरीनाम जोन सबन हुआ परे तने ब्रोमफिस चलावे सुंदर एनग सुंदर एनग एरफारे बकि हिया बातचीत हो रहा है एगो एक्ट पार के भैया क्यूबान एक्ट पार मतलब दुई परानी के बातचीत यहां हो रहा है चित्रा तो दिलप अब देख का भले क्यूबान के दोंदर दाख के बातचीत है कटली से काटी से ओके कोनो तो बैनाद पांडे राइश्री भी आ गया है तो आपको राइश्री भी हम प्यार देते हैं यहां से हमारा प्रोग्राम में जुड़ने को तो अब देखो क्यूबान के का भले राइश्री क्यूबान के बुधवार के ना दोंदर दाख के भैया और बुधवार के रात के बांध के समन कटली से काटी से ही बातचीत होएगा मोंगो स्त्रात में और खवापन द रोफर्स में कटली से काटी से भैया और कमोड़ी पे दुनिया ने कपाशों त्रय धल ले रहा कटली से रहा भैया ब्राउन फिश ओकर चोरी करके लेके भग गए क्वाटा में तो भैया है स्वाइड आल और दोस्तों असाइड सोशल मीडिया पे जइयो तीर खेरेंगे वहां के बड़ी आदमी गरियावे भैया पे आज सोशल मीडिया पे गर्मी तुर्क में रहा और घर आवे है और मैं सुरीनाम इसमें बेहतर खबर दिलाते उधर इरलक सैन आलस वोर दूर। तो हमारा भैया फतिंगन रामराज भी आ गया है सुतमेर से। तो भैया फतिंगन आप तो बहुत बड़का फैन है फिर यहाँ पे के, आपको तो मालूम होगा कि इस वक्त सुरीनाम देश में बोले है अने सिमोंस बोले है कि हम कुर्सुआ स्टाबिल कर देली बाटी। मा कुर्सुआ तो भैया फतिंगर संतो की स्टाबिल कर ले रहा, तो कौन ची तू स्टाबिल कर ले, ऐसे ऐसे बात आदमी बोले है। और बाकी दुकनिया के प्राइसुआ खड़खड़ खड़खड़ चढ़े भैया, खड़खड़ खड़खड़ चढ़े, अजोन ची चढ़ जाए उना उतरे जाने हैं। ये सब बात है सुरीनाम देश के। तो बोलिए जोन तू वही बतिया हर हाल करे दोस्तों, यानी सच्चाई कहना हमारा काम है। हाँ, तुई फरदाख्तन फॉर फरमुडलक स्कित एन सिस्टर्स प्रोया के गो भैया, सुरीनाम में कहीं एगो सिस्टर प्रोया के परमारिबो में। तो यहाँ बताए गए भैया वहाँ पर दुई आदमी दी ट्वी ताल वोट इरफान फरदा मंस परसोन दिन दोपहरे भैया पिस्तौल लेके दागी से दुई गो दागी से भैया जेकर पेट में लगल है, और जेकर पेट में लगल तो अब तू जाने जितना और खान है तो वही बा ओके ले आए कि समन सीकन हिस में धरी से एट फॉर लूप को ऑन द सुक फॉर द पुलिस इज नॉट फॉरन gekomen दैट द ट्वी फरदाख्तन इन द फलीडर vermoedelijk zaken dienen met de slachtoffer। तो जनता ये सब बात है क्यूबान के, और ना खाली क्यूबान के दोस्तों, और समाचार आप लोग को हम बताएंगे। अब देखो फुटबॉल वही का हो भाई, सब कोई लोबी करे है वही का, माँ वही का में सबन बोले है जोगी बोले है रख रेंगवा भैया 500,000 डाला भरी से, और का बोले है का टेलीफिसी के एसेंट के का बोले है रक्त कीने के बारे में, बोले पैसवा कहाँ मिलल बोले ये सब ना बतावे है। तो अब गैगरी रसलान एकर बारे में बताई से बतावे यहाँ पे कि तोरिया कैसे है दोस्तों। गैगरी रसलान यहाँ बतावे है कि तोरिया कैसे है, यानी कि वो जो 405 तक यानी कि फीफा के पैसवा भरे के रखेरिंग बताल द हेल ऑफ अन फीफा लाइसेंसी फॉर वी का ऐसे नहीं फिया द ए बोले आधा है, तो जब पूरा रह तब तो हो जात भैया ना फिर, तब तो 1,000,000 डाला हो जात भैया 1,405 तक बतावे हियां रखेरिंग साल एसटीफे बोले फिनेंशियल अंडरस्टैंडिंग देबे फॉर लीडर फीफा लाइसेंसी के बारे में। और बोले है फीस प्रेसिडेंट जॉर्ज रसलान बोले है openbare vergadering met nationale assemblee mee. Volgens hem zal de overheid de helft van de kosten voor haar rekening nemen, terwijl STVS het resterende bedrag via sponsoring moet zien op te brengen. Toen ik er waren met Jogi bolle raha kahen sponsors het toen verwawe to ab jai ke Rusland hier batawe he ki aadha paisa STVS zal sponsors se khojiga aur aadha paisa rekening bhariga. To hier bataya hai gaf aan dat de kosten van de uitzendrechten dit jaar naar verluid ongeveer $450,000 bedragen. De regering heeft volgens hem besloten STVS opnieuw te ondersteunen. Tussen naam me paisana hai kaas me bhaiya aur ka bole hai ga aadmi jarun mangi football dekhe bhai, dat is ook een recht op alle burgers jo een football mange dekhe. तो ये काम तो चाहिए हो एक, लेकिन प्रवीर देर फिर स्पॉन्सर हाल में से नीत हम लोग के साथ खास इस ऑल हील एल डगमग डगमग भैया, और एल्क सेंचिस एल्क डबल चूस मुते उम खदराइट वर्ड कि कहाँ हम दे और कहाँ ना दे वो भी तो अलमाल हो दी देंगे स्वामी कार सिद्ध भाई। तो जानो एक बारे में। अब जनता हम जाई और आगे और आगे जाए क्यूबान से लेर लिंगन ऑफ स्कूल। अब क्यूबा के बात जो हो गए है तो यहू बताए कि क्यूबा के लड़कन आजकल सूरीनाम में नीदरलैंड से जा सी के भैया हाँ het onderwijs in Suriname is niet voorbereid op de komst van Cubaanse kinderen die grotendeels zonder verblijfdocumenten in Suriname wonen en thuis uitsluitend Spaans spreken. Sinds 2020 kwamen netto uiteraard heel larken aan en ghar is even Spaans pade hai en is sabke chahin jai ke सूरीनाम के स्कूल में भैया लेकिन सबके घरे पढ़े और सब इलिखाल होले भैया तो कैसे जाइए यहाँ बताए गए है यहाँ बताए गए हैगा स्पांस तालक केंद्रन और बोले हैगा ऑन द स्ट्रीट hoog dorp leerkracht op de basis van bestuursleer van de vakbond Wisa Stree के बारे में है तो हमारे प्यारे प्यारे जनता आप लोग को हम और आगे अपना प्रोग्राम को बताते हैं। अब देखो भैया यहाँ पे हम बोले तरी कुछ बैचलान के बारे में बताए चलो जानो रोमेनिया में भैया ड्रोन गिरल है जहां आदमी रहे है कुमार शिवलाल आपको हम स्वागत करते हैं। तो ड्रोन गिरल है रुसलान दागत रहा ड्रोन उक्रेन पे जाए के गिर गए है एगो फ्लैट पे और है रोमेनिया में और रोमेनिया कौन से भैया उन्नाफो लंथ के आदमी है। अब एक बारे में बारा जुगु जुगु हुए अब रोमेनियो बोले हैगा कि हम लोग के नाफो लांदे चाहे बस कादक करे के बाकी रसला न गए उर्लोक आउटफूर करे रोमेनियो से उजाई के गिर गए है एगो ड्रोन जो उदागर मांगत रहा जाए के उक्रेन पे तो एक बारे में क्रेमलिन मॉस्को से और बोले हैगा बैतलान से साका मारिया सागारोफा रुसलान के रोमेनिया फरक्लार्ड सुख के रुसलान के कौंसिल में तो पर्सोना नॉन ग्राता एंड स्लोथ एंड कौंसिलात नादात ना फॉल्कर रोमेनिया रूसी ड्रोन हाथ खलेट तो ब्रांड इनर फ्लैट अरे ना बे डे ग्रेंस में उक्रेन और बोले हैगा ड्रोन इंसिडेंट अल्स एरस्टक एंड रुकलोसे एस्कलेशन फॉर एट क्रेमलिन हेड लॉन्ग सेल्फ कंडक आन नो फ्राइडे टू इन्वेस्टेरन इन बेटर ड्रोन अफवेयर दैरफॉर विल हेड गेल गब्रुकेन फॉर यूरोपीसे सी फंड्स लीनिंगन दिस रोमेनिया और रसलान भैया तो लोन जा रोमेनिया और पोलैंड तो लोन जाने ग्रेंस पे हैगा एंड दैट्स इन द रिस्को एकर बारे में तो रसलान zeg snel met tegenmaatregelen tegen Roemenië te komen. De opkomende maatregelen alaiga op ik er bare mee. जैसे रहेगा आप लोग को हम बताएंगे सेलेंस्की बस्कुलर रिस्लान फन ड्रोन इन जिदेन फन रोमेनिया के बारे में हमारी जनता। अब देखो भैया हम जाई है जापान के सूरीनाम में भैया जापान के ओ तो भर गए चलो न परे जाने हैं कई रकम ओ तो सब जापान के ओ तो चले है एक रही सेल्फ को जापान से ओ तो मैसेज है स्टेफ को मोटर बोलिए जॉनी रिक्लाम करे नहीं मदद इस ओक सो दट वेट वे अलमाल। अब हुआ के जनता जापान के बोले है अफकलोपन पांच बरिस में बीते हुए पांच बरिस में 2.5% बोले हैगा अफकलोपन बफॉल्किंग फॉर जापान इस अफकलोपन फाइव यार में 2.5% अफकलोपन जनता कमती हुई के 2.5% और बोले दैट कोम एरोब नेर कि फोरक है यार 3.1 million मिंदर मेंशन वोंदन इन 2020 एंड grootste daling sinds Japan met volste stelling begon in 1920 te lon jano India haal kar dis Japan ke bhaiya India mein aur zyada aadmi ho gaye hain Japan ke befolking bole hai ga 128 million mensen ra 2008 mein यहाँ बताई गई है और बोले इस सका हुए अदमियन हुआ पे और तुलन जानो हो भैया बेबी जो है 4,705,809 बेबीज खबर भैला और 1.6 million आदमी मरल रहा तो ज्यादा आदमी मरे दाना बेबी खबोरे हुए तो बढ़ंती जो देश के उसका हुई एट हेड ऑनर सु ब्लाइ दैट जापान 2023 एंड डर्ड एट 65 प्लसस बस्टोन दाना सो असर ओक एंड थिंग मेंस 80 यार ऑफ ओदर तो बोली कुछ जापान के बारे में आप लोग को हम बताई दी कि तोरिया कैसे है भैया, कि जापान में आदमी कैसे कितना जनता हुआ रहे। अब भैया तमाशा देखो तो लोग जानो है ईद उल फितर और का बोले ऑफर फेस्ट रहा। आप सबको बधाई हो, मुबारकबाद देते हैं हम यहाँ से। लेकिन ऑफर फेस्ट भी भैले पूरा दुनिया में, जहाँ हमारा मुस्लिम भाई बहन रहते हैं और जब वहाँ पे ये बात हो रहा बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में भैया सब एक भूल के लेकर बेफल के लेके गए और ओके श्राक्ति करे मांगी भैया। तो वो बेफल वहाँ से भागल है भैया, वहाँ से वो बेफल भागल है और बेफलवा बहुत मोई लगे बेफलवा देकर भैया ओकर बार और जितना है कि आप लोग सोशल मीडिया पे ये तो देखिए ओकर नाम सबन धरे से गया दोनाल त्रेंक मन लगे भैया ओकर बार और सब बगलिया मई से झारल है हाथ दी मार ए कहकर और ओकर नाम अल्बिनो बेफल बांग्लादेश में और वो भाग्य है। तो इतना मोई लगे वो बेफलवा मतलब वो बुल जोन है हम लोग का बोले लोग के भैंसा बोले ना मेरे ख्याल से। तो ओके सबन बोले ओकर गटई ना काटीगा तो ओके ले जाए के को धीरन तैन में धर दी से बोले दा दोर से ब्लोंदा हार दोनाल ट्रिम पोर्ट खनुम ओकर नाम वे फलवा के धर दी सबन दोनाल ट्रिम भैया प्रेसिडेंट जोन हम लोग के अमेरिका के वन ओकर बरवा परसीस ओइसने लाल लाल बगरिया ऐसे छारल है। तो कुमार शामी भी आ गया है, आपको हम स्वागत करें, चांदनी जितन भी आ गया है, मतलब कि राकेश आ गया है। हाँ तो राकेश जी आपको हम स्वागत करते हैं उत्तराख शहर से मेरे ख्याल से। हाँ तो यहाँ बताए गए है कि ओकर गटई ना काटिस अब बांग्लादेश के रखे रे का करी से ई भैंसा के ले जाए के दीरन तैन में धरिस की तुलन एके काबुल है अने पोसो फॉल्क मिर्धा हेफ्ट है दीर अन बिसोंदर सख्त अर्द का करैक्टर द ब्रूर फंड मिरांडा बदाख द बेनाम डोनाल्ड ट्रम्प ओम दे से कैप्सूल एरग लाइक ऑफ दैट फ्रॉम अमेरिकनस प्रेसिडेंट और 680 किलो की बा वीकन द बिफल वेट एयर दिस वीक verkocht om donderdag geofferd te worden tijdens de offerfeest. Het is moeilijk om afscheid van hem te nemen, maar een offerdier is voor de offerfeest. We zullen Donald Trump voor altijd herinneren, zei Mirda tegen de krant. Maar op het laatste moment werd het dier gered van de slag. Volgens de Bangladese minister, wanneer donderdag tijdens offerfeest zoveel mensen op de buffel afkwamen, dat het niet meer veilig was. De Bangladese overheid heeft de koper van Donald Trump terugbetaald en het dier is momenteel in de dierentuin van hoofdstad Dhaka. Ja, aanvloon je joh, ja. Dhaka, te jaroer je joh. En ja, in Bangladesh ke Donald Trump ke dekhe. Ye baat hai hamare pyare pyare janta. तो हम और आगे को अपना समाचार लेकर चलते हैं। ताजा ताजा ताजा ताजा खबर भैया, घर में सुखना है सुरीनाम देश में, घर बैठे सब तो के मार पीट के लूट लेवे भैया, लूट लेवे है। यहाँ पे देखो एगो जगह के नाम है बेला दोना स्ट्रात सुरीनाम देश में है और वहां पर कौन ची लेगे भैया चर चर लुटेड़ा। हाँ रात के और गए 1000 एसआरडी लूटी से भैया, तो चार मिला कि कई मिला रहा कैसे बटिए पैसवा और एगो में मोबाइल टेलीफोन और बोले हैगा अदमिया बोले फॉल्कन्स एम का हाथ है नेट्स एंड एरफ जैसे वो घरे गईल है उतरे में चार आदमी के अनफाल करी से पिस्तौल ले के बदरेक करी से और करतास ले गए स्पिलर हाँ ओए मैं खाली 1000 रुपया पैसा रहा भैया 1000 रुपया में तो हुआ का बोले हैगा कौन ची पहिए भाई बाकी उतरा बड़का ऊपर फाल से बन करी से पिस्तौल ले के। तो ये बात है हमारी जनता। तो एगो बहुत जबड़ बोमा मिलल आना कौंदा ना लाओ लाओ चीज है बुद्धू चांदनी जबरदस्त तू जाने सरनाम में बूढ़ा भाई, पानी इतना बरसल है चारों बगल बूढ़ा है, तो जनावर अजगर जितना चीज है सब अपन होल छोड़ छोड़ ऊंचा भगे है। तो यहाँ बताए गए है, यहाँ बताए गए है सूरीनाम में बरखा से गो वो वेख है वहां पर जहाँ आदमी रहे है जबरदस्त बोमा हुआ गैल है भैया, और इतना भारी बोमा हुआ गैल है रेप्टिलन खान तैन स्वार फाक ऑफ द सुकना रूख एंड फेल प्लेकन यहाँ लिखल है अपना लड़का के बचाई के रखियो भैया, औरतियों के पकड़ के बैठियो वन बोमा ना देखे ती लड़का है कि कौनची है मुर्गी है कि डुक्सी है, ओके जब महकल ओके जब महकल तब ऊ तो के लपेटी एगो खराफ मशीन से जे के सब बोले है पकलेन ओसे सबर टांगी से हम खुद इतना बड़का बोमा ना देख ली भैया, बहुत जबरदस्त बोमा है। और बताए गए है द साम लीफन वर्ड आर्टिफिशियल अलर्ट ब्लाइफन में से फन दिस सोर्ट अन रेप्टाइल बेस्ट में से आप लोग को ले जाए तेरी कालम की ओर। हाँ कलम के संगे भैया बारा छिछा के लेदर है नानी, वो छिछा के लेदर है भैया, कभी देखियो तो कलम में आए तब उस सब के सूरीनाम में सांदराई पे देखिए फरकेस ले दे न जाए के कायन में उतरे तो गायना में अब दूसर चकल्लस भैल है नानी, दूसर चकल्लस भैल है। और वो बताए गए है कि कलम के बोले तेलवे ना पाई सरनाम में भरे के केरोसिन, तो बोले वो उड़ के गैल है, उड़ के गैल है फ्रांस गुयाना में भरिस तब उ नीदलांतर खाइल इसके बोल पे भैया। ये बात बतावे है कालम अब सूरीनाम के हुआ पे सब संदराई कर्मी ऑन द सुख कर की चीजुआ कैसे है, तब बोले कालम बोले झूठ बोले है, बोले अब दैलक आहित आइले ब्रांस्ट ऑफ क्वेस्टी रोंड कालम जो योहान अदोल्फ फेंगल इंटरनेशनल लुखाफन सूरीनाम में बा मंगलवार के कालम जाए के फ्रांस गुयाना में भरी से तेल, तब उ जाए के उड़ल है और मेल पे बोले सन्नाम में बोले तेल ना है। तो यहाँ बताए गए हैं फोल्कस वार्निंग मस्तास ओली डायरेक्टर एडी फ्रंकल बोले ये बतिया नकलोप होएगा, और बतावे है कि चीजुआ ऐसे ना बोले कालम बोले पैसा ना भरी से द क्वेस्टी ड्राइव फोल्कल फ्रंकल ओमन बताले खस्किल तिस कालम एंड गो टू द डॉन द डॉक्टर मास्कपेई फ्रॉम स्टास ओली वार द फ्लिक्स मास्कपेई ब्रांस्टोफ अफनी फ्रॉम गो टू बोले बेहर बताले फ्रॉम अ ब्रांस्टोफ रेकनिंग ओक एन फी नेम्स द स्लख्त एन लुफ्टहाफन एंड ड्राग हेड बद्रा फॉर फोल्कस अफ एन तो पैसा ना भरेला भैया कोनो फेसे, तो ई कालम इतना झूठ बोलिस भैया, लेकिन सच्चाई कैसे है कालम ही गो टू इन मिनट्स इन कोर्ट खदी खदाफार द सात दिन फ्राइडे 29 मई दौड़ तखान। तो बतावे कालम सऊदी फी अलांगर तय नहीं बतालन दार दो रही गोतु है बद्रा फोल्कस फ्रंकल मेर ना अन यार फोर कोटन इन मिडल सो द अखते सन फ्लिंग सेन opgelopen en wil go to that KLM eerst betaal voordat het brandstof wordt geleverd, maar zo is het mensen to mange he का बोले है का पैसा ना भरे तो कम हुआ थोड़ो बनी कालम, तो हम लोग के प्राइस चढ़ाई से तो कहे ना जाए कि सूरीनाम के तेल के पैसा भरे और जनता पे लाए। आप लोग के शायद मालूम है भैया हम कालम के बेइज्जती ना करीला, मार एक पर सेल्फ मी खमा मिस्किन है वो यूली ओक मी खमा, जब तू कालम में बैठियो भाई और वहाँ पर तरी से इसके फॉल पर जो फरतराखें होइए तरी से लाती हुई गए जैसे कि उके उड़े के 12 बजे मान लिया जाए, अब 12 बज गए 20 तक मनी तो ऊपर हुई गए, तब वो जाने कहा बोलेगा बोली पासा चिरुआ कोफरवा भीतर हम आई गए, मैं पासा चिरुआ पता ना कहाँ जिस वसैन बीस तक कोफर तरख चला दे एक है पन पार कर मेकअप ऑफ दैट waar is mensen dan weten wij niet, maar als ik de situatie lees over de kerosine probleem van KLM John Ulkaliski zijn naam getelen hij, waarvan de situatie dat KLM niet betaald had, dan geloof ik KLM heel minder die mensen. KLM gaat elke keer draait diezelfde plaatje. Die persoon is nog buiten, die koffer is ingeladen en die koffers worden weer teruggezet. Waardoor wij nu een beetje laat zijn met kuilen. Dit heb ik niet één keer, diverse keren dezelfde bandje draait daar mensen. To Ursula Bagus, moet je bij aangaan, hè? Auro, ja nee. Rakesh Samuj ke niche Ursula Bhaggu Samuj bhi aa gaya hai ta aapko hum ane Pandit Tilak Dhari Vekh se swagat karte hai yahan Den Haag se aapko to janta aur ab jaila chinaini ke aur nani chau mang chau mang chau mang chinaini ke aur jaila bhaiya चिनैनी के ओर हम जाते बोलिए जॉनी चिनैनिया नासी बनाई इसकी बामी बनाई से ये चिनवा चिनैनी 40 बरिस के चिनैनी भैया बातचीत हो रहा है वोल्फ्राम स्ट्रैंड के बातचीत हो रहा है वोल्फ्राम स्ट्रैंड के बातचीत हो रहा है और बताई गई है बोले एगो टिप क्रेक द चिनैनी से फ्रोन op het betreffende adres onder dwang werden ingezet voor protestue bhaiya ego tip sipahi ke milal hai ki wahan par protestue ke kaam chinaini kare hai ye baat ho raha hai Wolfram Straat mein bhaiya lo na jaiyo 12 inch hoy ge sarnam mein जूता पहन के जइयो हमारा भैया लोन सूरीनाम में बहुत जबर हाई फीरस हो गए हैं हमें याद हो गए हम बताए ला बीते हुए दिनों में इसका न्यूज हम पठारी बुद्धू कान खोल के सुन ले ना जइयो जची रही लगे हम अदरस वहाँ दे वोल्फ्राम स्ट्रैट में भैया वहाँ पे मेंशन हैंडल हो अतरा चिनुआ के त टेप मिले है त बोले अब बतरेफन द अंदर अंदर दुआंग वर्दन इन खसेन पोर्ट फोर प्रोटेस्ट Twee naar aanleiding voor dit informatie werd een inval uitgevoerd waarbij twee vermoedelijke slachtoffers werden gevonden. Bhaiya te doei mila hua pe doei go au chaudike natuurlijk paisui op basis van de aangetroffen bewijzen. Verklaring van de twee slag werden verdachten en afstemming Surinaamse sipahi ook gelegen hè. Ab gaile dekhe ki ke oke smokkel karke lai se aur kaise toriya भैल है हमारे जनता हम सुचित लोग के गो गनवा सुनाई दे ना त गनवा जे सुनाई देवे तब अभी हम तुरंत आ जाएंगे

और दोस्तों ये गीत बहुत लंबा है, इसीलिए हमें इसको तरी से रोक कर अपना समाचार को आगे लेकर चलना है। तो टोनी श्री आपको भी हम बहुत प्यार से स्वागत करते हैं। मालूम नहीं काड़ में है कि बस में है, लेकिन है रेडियो फाउन पे। तो दोस्तों हम चलती है यहाँ बातचीत हो रहा भैया, सब कोई बोले पड़ोसी नैली रघुनंदन महावीर आ भी आ गए हैं। तो नैली सब कोई बोले हमारे पड़ोसी भैया, अच्छा पड़ोसी बोले बहुत खुश नसीब वाल को मिलता है। हाँ जेके खड़े के वही मोई बिरमान पाई बिरफराव पाई पाई के करो खच्चड़ भैया एंट वे दरी लगी देर बेल दबावे। लेकिन यहाँ बातचीत श्री नाम के हुए है, यहाँ बातचीत हो रहा है श्री नाम के लुकास्त्रात के बातचीत हो रहा है। यहाँ पर जब तू बाजा जोर बजाइयो भैया, देर बेल दबाई पकड़ ले रहेगा भाई, ये कुछ रही डायरेक्ट क्लाक्ट। तो मोतर फिच पे लोग जा रहा है, फिर भी रेडियो फाहुन को सुन रहा है, दोनों हाथ से स्थिर को पकड़ना जोर से। हाँ और यहाँ बताए गए हैं एक 25 साल के 520 तक यारक क्लेरेंस है। बतावे गए सूरीनाम में भैया एक सिपाही पकड़ी सी का कर ले रहा भैया, ये का करेला लुकास्त्रांत में। बताए गए है ना एक नाई कई बार भैया, वार है फोकस ऑन कीव हेयर हार्डल फॉर एनस्ट को ओवर लॉस एंड ब्रेकिंग हीफ को सोरख पाए। सूरीनाम देश के बात है, बोलिए दमिया दुरुक्स फॉर सलाफ वीर मनवा हमारा बा। तब तो और गड़बड़ भैया, जब तू दुरुक्स पीयू के नशान रही है तब बताए से फरक्लाल अल खरोमत हिंदर तो अंदर फिंदर फनहार भीरमान क्लारेंस फोल्कस हार इसे दुरुक्स फरस्लाफ्ट। और बताए है सो ईर्दर हैबन गदरेगत हर वोने इन ब्रंक्त स्टेकन दरना सो है यार एन हार गसीन स्टेलसलमातक हैबन लस्तक फालन एन बदरेगत मेंसे। तो ये बात है इजुंकी जाएं के अपन बिरमान के बदरेग करत रहा भैया, कई बेर बदरेग करी से और लड़त रहा उसे जो कर सलाब कमरा में भैया जाए के और का बोले एस्कालेर करी से इसे होर्द फरदाख्त तकीर खान वरना से स्लाब की आमर में घुस गए भैया। तो जिनकी तोर बगल में है कोई ना मांगे ऐसन बीरमान भाई, सब कोई मांगे हमारे बीरमान नेचस रहे। बोलब की बीर फ्रो हमें शुक्रु लेनी कर दिए, तो के बोले के कमवे नोलाए के तो के मीठा मीठा शुक्रु रे अगर देखो चुम्मा भी दे दे मीठा मीठा। दोस्तों ऐसन बीर फ्रो चाही और बीरमान हमार पेड़वा झुक गए तरी काट दिए ना बीरमान। बोली बोली तो के बोले के काम है ये ना, हम अपन काम छोड़ के आयला करे तो ऐसन भी मानना चाहेगा तो नहीं। तो ऐसन भी मान नसीब वाला के मिले भैया, ऐसे थोड़ो मिल जा। आप देखो शाया का बोले है ई मेक्सोन शाया हाई ज्ञान है भैया, माओ का बोले है मिनिस्टर फॉर यूजीसी एंड पॉलिसी के और मनोरथ के हनीश मनोरथ के बोले आज फिर है और एक कोई मंगबे ना करे भैया वहां पर। अब हाइटियान जेन साया मिक्सोन का बोले है बोले 10 गो पिकअप बोले हम देती लांटी के सीकर उही के मारे पिकअपुआ खातीने के माता आशीषेर बनावे। तो हाइटियान के बोले रहा बोले 10 गो बोले 10 गो बोले पिकअप हम ले ईफर करती आंसरी नाम से ओवर हेड के सो दैट वेरक्स हम ही इन बेहतर आउट को फूड कॉर्नर वार्डर एंड द खमीस का दारफन ओक सो कुन प्रोफिटेरन निश्चित है दारफन en daarvan af vanwege de negatieve uitlaten richten hem naar dat beteken. Bekend werd dat hij adviseur van Jusbon minister Haris, maar nu red bolleke opholen hem pikupo aan nadebe, omdat je adviseur na bati admino klak karit bolle hem nadebe, dat is go pikupo aan to, ta Haris manorat ke isie boliste, ta lalis deisje bij Haris manorat ke, ki toke hem 5 go pikup debe, hame tu banale apan adviseur, ta janta huan pe, bahut kritiek leveren, dat wil hem pikken poe aan na debe. Het soort stoort de voormalige VHP-sponsor, vooral dat hij in een DNA zwaar is bekristeerd.
Alhoewel terwijl hij juist iets goeds voor het land wil doen, mensen. To bina bhaiya chara ke machri na mile hai. Bhaiya, somar pick-up wat to thoro di hai. 5 go pick-up di hai. To tu mangye okar 10 guna lanti se lewe. Aur na aise jamana hai, hai na bhaiya buddhu. So so me koi ek jhaanpad na mange mare. To 5 pick-up di hai saya. To socha hai tiyan hum lo baati ka. Na na na na. Bole alles heeft een reden, mensen, zonder de minister. Het weet, ik heb 26 pick-ups die onderweg zijn en ik zou daarvan 10 pick-ups aanleveren. Willen ze, mochten ze nemen en wanneer het geld er is, konden ze me betalen. Ook al is het na 5 jaar, maar door die jugu-jugu ga ik je eerlijk zeggen, dan mi abik. Kanami ede, zei Shaya in de interview. Bole hum na debe. To ye baat hai, Shaya ke baatjeet ho raha hai. Hai tiyan ke bhaiya, kahan itra paisa paise. Ab ekar batiya chahi on the suk kare ke to. Lekin hamar Suriname me kahan hai fiat bhaiya. Glat hai, baki koi obdraag na debe hai. Ki isam mani yen ke tu jatari on the suk kar ki tu. इतना दिन से दसवां बाटे कहां तू इतना पैसा पहले है कैसे तू इतना मोनी मांग होई गेले ना खाली एके मां और तो के चाहे अंदर सुख करे के चीजवा कैसे है तो ये बात है हमारा प्रेसिडेंट सुरिनाम के जेनिफर सिमोंस अपन पूरा दिल खासी ले के ब्रासिलिया में गए भैया अपन आदमी के भी ले गए हैगा बोले ब्रासियान से लुख मार अफगानिस्तान ब्रासिलिया फॉर ऑफिशियल bezoek. Het Surinaamse stadshoofd zal aansluiten eveneens een officieel bezoek brengen aan de Dominicaanse Republiek. Toen wahap jijga Glenn Gerling, zo kan het mee begeil he, delegatie leke in welke hoedanigheid hij aan de reis deelneemt is vooralsnog onduidelijk. Waarvan Simons Bollera, bolle ook er het mee doen he, ik kom hun regering mee deelnemen nakker he, maar toch ook er zingen ja he, maar ook er het mee he, के टिकट भरे के ना भरे हैं एकर बारे में कुछ पता ना है आप लोग जानो भैया एगो हिंदुस्तानी भैया एगो हिंदुस्तानी बस शफेर है स्कूल के लड़कन जन मोई ना रहा बेमरिया तरी लड़कर रहा ओके जाय के बतस्त करत रहा एगो ड्रीम 5 तक या रखे हिंदुस्तानी बस शफेर है और एके भैया होफ में गेल है एके मांगत रहा ने छोड़वावे और ई अफका चंद्रा अलगू बोले धार्मी ...blijft de eerder beslissing waarmee de aanhouding en verzekeringstelling van de verdachte rechtmatig werden verklaard volledig in stand. Obole hega, bis dat ik meike ook iets om een pakkerise, die maar een kind in zijn bus zou hebben betast. Het verzoek op basis van artikel 54a, wetboek strafvordering, was eerder al door de rechtercommissaris afgewezen. Daarna stelde de raadsvrouw hoger beroep in tegen de beskikking. तो ये सब बात है हमारी जनता तो हम एक दो समाचार और आपको सुनाएंगे अब देखो भैया फोरख रखेरे लेंड एक बार रखेरे लेन कल रहा 5 वर्ष में 2.2 मिलियार्ड अमेरिकन डॉलर और एक वर्ष के भीतर में 1.8 मिलियार्ड लेनी 10 महीना में करी से भैया फोरख रखे सन तो की 2.2 मिलियार्ड लेनी कल रहा 5 वर्ष में और यहां सिमोंस के रखेरे और रुसलान के रखेरे 10 महीना में 1.8 miljard lening kar chukal hai ekar bare mein minister Adeline Weimerman van financiën planning so juist gemeld in de nationale assemblée tijdens de behandeling van de wijziging van de comptabiliteitswet 2024 mee minister Weimerman ging verder in de op de leningen die door deze regering zijn genomen to ye sab baat hai dosto और यहां पे बताया द स्टिक्टिंग सिंगल मॉडल प्रोजेक्ट सुरिनाम ओवर द मेंस्ट्रुएशन के बारे में बोले हैं मेंस्ट्रुएशन प्रोडक्टर फ्रॉम मिंद्रन स्कूल एंड वर्क फॉर सेम ऑन द फ्राउन एंड मेजेस इन सुरिनाम तो भैया रंजीत लक्ष्मी नारायण सिंह भी आ गया सीता दिहाल भी आ गया है टोनी स्त्री आ गया है
इसी प्रोग्राम्स एक तरीके से आज हम अपना प्रोग्राम को खत्म करेगा। नली रघुनंदन भी आ गए हैं, धर्मेंद्र स्त्री राज राम लगन चित्रा अवतार दिल बुद्धू या फतिंगन राम राज रंजीत राजा अयोध्या तोनी स्त्री चांदनी जितन कुमार शिवलाल ये सब हमारा प्रोग्राम में आए हैं। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में भाग लेने को। आने हुआ हफ्ता में हमारा तुम्हारा मुलाकात होगा। बाय बाय, नमस्कार।

और क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर तुम लगती हो, के बाद हम जाते हैं कि मेरे नसीब में क्या है यारो।

थी नहीं दोस्तों, कुछ रीमेक सॉन्ग आज हम आप लोग को भी सुनाएंगे। ओल्ड एंड गोल्ड रीमेक्स में कैसे लोग गाए हैं और मिसी को बजाए हैं, तो हम और अगला गीत की ओर चलते हैं।

0: पुष्पेंद्र इटावा पुष्पेंद्र इटावा पुष्पेंद्र इटावा।
1: और दोस्तों रीमेक सॉन्ग के मूड में आज है, तो हम चलते हैं तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। और यो अरे भैया तू तू है वही जो वही दिल से जिसे अपना कहा। तो ये गीत तो हम प्लेयर पे रख चुके थे, लेकिन अब पता है कि कुछ और चलेंगे। जैसे हमने यहाँ देखते हैं कि ये गीत में कुछ तरी से कुछ आ गया है, लेकिन हम जहाँ काम होता है वहाँ तो कुछ होता है। सुना जाए।
2: 02 6 4 0 0 8 9 5।
3: हेलो,
2: अकेले हो? दोस्ती करोगी?

जिसे अपना कहा हमारे यारो और कुछ रही में एक सॉन्ग आप लोग को ये घंटा हम सुनाएंगे। तो यारो इसके बाद हम चलते हैं एक और दिए यानी कि रेमिक सोन की ओर।

0: बाजार ठाणी बाजार ठाणी बाजार ठाणी बाजार
1: और उड़नी उड़ के जनचियो तो माँ कुछ और मजा है कि सजना है मुझे।

0: आपने बहुत अच्छा शॉट दिया।
1: थैंक यू। मेरे लिए तो ये सब एक ख्वाब जैसा है।
0: ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, पर ये

औड़ी जो भी हो दोस्तों, आंची अंप को झुमाएंगे और नचाएंगे भी हम और जगाएंगे भी हम।

और अलामंग सुकू सुकू और कोंची सुकू सुकू भैया प्यार के सुकू सुकू के बांछी ढो रहा है हमारे सुनने वालों एक बार फिर करते है जॉनी नंबर वन है हमारा नाम और आपके प्रोग्राम बनाना है आपके लिए हमारा काम यही है हमारा प्यार का पैगाम। तो उसके बाद हम चलते हैं कि मेहनी लगा के रखना।

तेरी हाँ तेरू मेहनी कब लगते है जब शादी होता है ते। तो धर्मेंद्र सिंह ने आपको इस गीत को गाकर सुनाए हैं दोस्तों, उसके बाद हम चलते हैं। और आजकल भी बहुत योपी पोपी है, और वो कौन सा गाना है, शेकिंग बेबी शेकिंग।

यहाँ भी शेके शेके कर रहा है दोस्तों। तो आप हमारा प्रोग्राम को सुनते रहते कुछ रिमिक्स बैठक गाना सॉन्ग हम आप लोग को सुनाते हैं। और कुछ श्री राम खिलावन के गीत भी आज हम सुनाएंगे।

0: और जाहू। दोस्तों क्रिस राम खरवान की आवाज में आप लोगों ने सुना है और जितने हमारे लोकल उस्ताद है सबके नाम लेकर हमारे उस्ताद को उस्ताद क्रिस राम खरवान आपकी सुनाए हैं। तो हम चलते हैं बैठे गाना रिमिक्स।
1: इससे काम आपसे

दोस्तों दोस्तों दोस्तों और हमारा बैठक गाना के प्रोग्राम तो हम जोर तोर से चलाते हैं और एक हो जाए कृष्ण राम खिलावन की जोन।

कंठ हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 3 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

की। और यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कुछ सॉन्ग्स आप लोग को, और ये सॉन्ग्स है यारन यारन, यानी कि बहुत पुराना नहीं है और बहुत नया भी नहीं है, कुछ मिली जुली गीत है। दिल जाने जिगर तुझ पे निसार किया है, गोविंदा करिश्मा कपूर ने इस फिल्म में काम किए हैं।

0: ओ मेरे दिल की चैन ओ सहनाई मेरे दिल को चुपाती लिए।
1: सुनो कहा कहा सुना
2: कुछ हुआ क्या
1: अभी तो नहीं

और आपको भी कुछ हुआ है? नजगिल लता जी किशोर दादा के ये गए हुआ जोंग है। अब आते हैं नजगिल लता जी और फरमा श्री मोहम्मद रफी का जोंग है।

मेराम ने प्यासा। दोस्तों ये गीत को और हम बढ़ते ही अतिशन हिट फॉर द वेंस, बहुत हिट फिल्म रहा और फिल्म के नाम ही धर्मात्मा का एक सॉन्ग हम चलाने जाते हैं। तो हमारे दोस्तों हम चलते हैं फिल्म धर्मात्मा का एक गीत।

और तुम जान हमारी हो, फिल्म के नाम है धर्मात्मा का ये एक हिट फिल्म सॉन्ग हम आप लोग को सुनाए, और अगर आपकी चांद कहीं खो गया होगा तो ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए। फिल्म के नाम है का

श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ सॉन्ग है खोया खोया चांद फिल्म ग्राम है काला बाजार के बाद हम चलते हैं हम तुम्हें चाहते हैं और कैसे चाहते हैं यहाँ पे इस गीत बताते हैं फिल्म के नाम है कुर्बानी ये भी एक हिट फिल्म सॉन्ग यानी कि एक हिट फिल्म थे दोस्तों और हम चलते हैं हम तुम्हें चाहते हैं कैसे

और हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे कि कैसे, ये भी एक बहुत हिट फिल्म थी दोस्तों, कुर्बानी फिल्म के नाम है। तो हम चलते हैं मोहम्मद अजीज की ओर और अलका की ओर दोस्तों, और ये भी एक हिट सॉन्ग है।

ऐ दिल और ऐ दिल हे और ऐ दिल है। दिल के बाद हम जाते हैं एगो बेस्ट ऑफ देवानंद सुपरहिट सॉन्ग और वो है एवरग्रीन देवानंद हिट सॉन्ग। फिल्म के नाम है और काला बाजार का ये सॉन्ग है हमारे यारो और ये भी आप लोग को हम चलाएंगे।

और पूछ मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गांव रे, और पीपल झूमे मोरे आंगना, और ठंडी ठंडी छाँव रे। तो उसके बाद हम चलते हैं, फिल्म के नाम है धर्मवीर परमाश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सॉन्ग है अनहिट सुपरहिट फिल्म।

फरहुंठ हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतो निकलिए तार कीजिए 9735 6320 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

और दोस्तों जॉनी नंबर वन है हमारा नाम और आज फिर हम आ गए हैं कुछ पुराने गीतों की संगम बहार लेके। तो पद्मश्री मोहम्मद रफी का गाना है, रफी के गाने आपको हम आज कुछ सुनाएंगे। और ढल चुकी शाम एक गम मुस्कुराने के लिए।

कुछ पुराने कुछ नए गीतों से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे। हमारे यारों, हमारे दोस्तों, हम चलते हैं अगला गीत की ओर। हमसे मोहब्बत करके कुमार शानू साधना सरगम का ये गीत है।

और दोस्तों हम उनसे मोहब्बत करके और मोहब्बत करके अगर मोहब्बत हो जाते हैं तो क्या होते हैं हमारे यारो, क्या होता है उसके बाद हम और एक गीत की ओर बढ़ते हैं, वो है तेरी याद दिल से और भुला ना पाए। फिल्म का नाम है हरियाली और रास्ता 1966 का, जिसमें मनोज कुमार, माला सिन्हा, हेलेन ने काम किए हैं।

और तेरी याद दिल से भुलाने चला हूं, जब किसी से नफरत हो जाते हैं, झगड़ा हो जाते हैं, तो लोग उसके याद भुलाना चाहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगला गीत की ओर। और होगा मत कर इतना गुरूर, जो कभी कभी लोग कितनी गुरूर करते हैं हमारे दोस्तों। अलका यानी पंकज उदास की ओर हम चलते हैं। और आओ मिल्क सुना जाए, मूवी का नाम है आदमी

गुरूर। दोस्तों मत कर इतना गुरूर। फिल्म के नाम है झनकार अलका यागनी, पंकज उदास का गाया हुआ सॉन्ग है। इस फिल्म में रीना रॉय और गोविंदा ने काम किए हैं हमारे यारो। उसके बाद हम अगला गीत की ओर बढ़ते हैं। कुछ नए और कुछ पुराने गीतों के बहान प्रोग्राम हमारे चलेंगे। तस्वीर तेरी दिल में, तस्वीर कब लोग दिल में उतारते हैं, ये किसी से बेहद बहुत बेहद दिल से और उससे प्यार करते हैं। नैतिक गिल्ला सा जी परमा श्री मोहम्मद रफी का सुपर हिट सॉन्ग देवानंद मालधान सिन्हा का ये सॉन्ग है। आप सुनते रहो।

और तस्वीर तो तेरी दिल में आती ही रहेंगी। आओ नैतिक लता जी परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सुपर हिट सॉन्ग है दोस्तों, तो प्यार भरी गीतों की बहान प्रोग्राम हमारा

की रूठ आई। और उसके बाद हम चलते हैं अगला गीत की ओर। और अगला गीत क्या है हमारे यारो, आज हम कुछ लवली सॉन्ग के मूड में हैं। और लवली सॉन्ग कब होता है, जब प्यार बढ़ जाता है। तो हम चलते अनुराधा पौडवाल उदित नारायण की ओर। अब भी या महिया, देखो भैया क्या है,

और आपकी आ जाने से कभी कभी बहार हो जाता है और बहार के बाद में कभी कभी मार भी हो जाता है। ये तो प्यार में चलते हैं हमारे यारो, हमारे सुनने वालों, उसके बाद तो हम चलते हैं और हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते हैं, और हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते हैं। आओ मिलकर सुना जाए।

फनफुनके हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे आमदनी के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9753 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

के फूल को भी तुझको, रफी जी की, मोहम्मद रफी जी का ये सॉन्ग है। इस मूवी में हीरो था अजीत भाई, जो विलन के रोल अब लोग अब वो करते हैं। तो निगत इंद्रिय से स्टका ये सॉन्ग था। तो अगला गीत की ओर हम चल, ये गीत जो है नहीं किया तो करके देख, मेरे ख्याल से इस गीत को हम पहली बार सुन रहा हूं, नहीं किया तो करके देख। और ये है नाइटिंगेल, नहीं नहीं मुकेश का ये सॉन्ग है, करोड़ों का दिल चुराने वाला, द हार्ट ऑफ द मिलियन, माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है। और मूवी का नाम है चार दिल चार रहे। और 1900 का, 1959 का ये सॉन्ग है दोस्तों, आओ सुना जाए।

तो करके देख, ये तीतल तो बहुत मस्त है भैया, और ये है हाथ जाओ दीवाने आए, मूवी का नाम है सिंगापुर, ऑल इज गोल्ड, फोर

हट जाओ और दीवाने आए, और कौन सा दीवाना आएंगे, हम आप लोग के लिए हम छोड़ देते हैं। और सुना जाए माइती मुकेश का ये सॉन्ग है।

और ऐसा ठुमक के मत चलो, ऐसा ठुमक के मत चलो कि आपको ठुमका लग जाए। तो ये गीत बहुत यानी कि मशहूर है दोस्तों, और ये है दिल तेरा दीवाना।

फनहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फनहंट के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9753562 तक सेफ न फेटा। फनहंट हिंदुस्तानी रेडियो।

और ओल्ड एंड गोल्ड जो गीत होता है उसमें स्वाद बहुत ज्यादा है। हम चलते हैं एक गीत के ओर जिस फिल्म का नाम है द ग्रेट गैम्बलर। अमिताभ बच्चन सिनेमन का एक सुपरहिट फिल्म है जो आप इस गीत को जानते होंगे दोस्तों।

और दो लफ्जों की है ये कहानी, मूवी के नाम है द ग्रेट गैम्बलर। अमिताभ बच्चन सिने तमन इस फिल्म में काम किया है, गीत को गाया है आशा भोसले दोस्तों। और ये ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग आपको जरूर अच्छा लगेगा, आओ सुना जाए ये क्या है।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुवारे।
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

और तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं दोस्तों, आउट इन गोल का प्रोग्राम यहां से हम चलाते हैं हमारे। तो यहां पर क्या है, आओ सुना जाए आउट इन गोल का ये सॉन्ग और पुराने गीतों की बाहर प्रोग्राम है।

जनम ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग हम आपको सुनाते हैं हमारे यारो हमारे दोस्तों। और एक और हो जाए, ये बहुत पुराना गीत है कि अखियों का नूर है तू जोहर एन महमूद इन गोवा, अथवा सुपर हिट फिल्म में से। और ये गीत आपको हम सुनाते हैं रेडियो फाहून के माध्यम से और यहां से सुनाते हैं।

0: ये गीत थी एक बहुत मशहूर गीत है, आओ सुना जाए ये क्या है।
1: बेकरार
0: महेंद्र कपूर
1: न जाए।
0: नहीं दोस्तों,
1: आपको हमारी कसम लौट
0: हेमंत कुमार।

और ये रातें, ये मौसम, और क्या क्या होता है दोस्तों, और पुराने गीतों के भाड़ सॉन्ग, हम चलते हैं झूमता मौसम मस्त महीना। और नतिगिल लता जी और परमाश्री मनाली का ये सॉन्ग है।

और झूमता मौसम, मस्त महीना, नैतिक लता और परमा श्री मनाली का ये जोंग आपको हम चलाए, हम चाहते हैं मैथी मुकेश की ओर।

और मेरा दिल ये पुकारे आजा ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग, और कभी कभी होते हैं सर पे टोपी और वेलकम कलर दुपट्टा। आओ सुना जाए।

0: और उजले उजले बाल लाल टोपी
1: द हॉट वन ओनली बे रेडियो फोनी।

और तो ये आपका कौन सा दिल है आपको खुद मालूम होगा, लेकिन ये चोली के पीछे और कुछ दिल है दोस्तों। तो यहां से हम अगला और हॉट वन और कुछ नाचनी स्विंग के गीत हम आपको सुनाते हैं। क्या है

और नमकीन हो गई है, नमकीन हो गई है वो और पानी पानी का ये सॉन्ग थे हमारी यार वो, और हम चलते हैं अगला अगला हॉट वन सॉन्ग की ओर। और वो क्या है, वो क्या है, चोली के बांती, चोली के बांती क्या आता है, क्या आता है।

और गुपचुप गुपचुप गुपचुप गुपचुप क्या होता है, गुपचुप में बहुत कुछ होता है। और जाए के और सो गए किसी और जगह जहां पान नहीं सोना था।

En daar gaan we weer. It's the dance and party time. Full heart.

और दारू पी के डांस करे और डांस करे, बिना दारू पिए यहाँ लोग डांस करते और गीत कहते हैं कि दारू पी के और डांस करे।

छम्मा छम्मा कौन है, किसका नाम है छम्मा छम्मा, और छम्मा छम्मा के बाद तो हम और आगे चलते हैं, और वो क्या है।

0: और नौ एन टी मारे बेरी यू फन हैप्पी ऑल टेट एन थ्री सेंसेशन
1: एक नशा से चढ़ता है
0: ऑन रेडियो वाहन

0: नींद के मारे में क्या क्या होता है दोस्तों, कुछ गलत मत कर देना, नींद में बहुत कुछ हो जा।
1: मेरी सनम है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से आप सुनेंगे टुकड़े हैं मेरे दिल के ए यार तेरे आंसू, आपको सुनाने वाले हैं मोहम्मद रफी जी।

अभी आप सुन रहे थे टुकड़े हैं मेरे दिल के ऐ यार तेरे आंसू फ्रॉम द मूवी मेरे सनम से हमने पेश किए हैं। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। मोहम्मद रफ़ी जी आ रहे हैं प्रोग्राम में आशा भोसले के साथ में।

अभी आप सुन रहे थे फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी ये रात फिर नहीं आएगी। दीवाने झूम के फिल्म का नाम है फ्लैट नंबर 9। इसी फिल्म से आपको सुनाने वाले हैं द माइटी मुकेश जी।

अभी आप सुन रहे थे गा दीवाने झूमके, रात के जुल्फे झूमके, मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। सोचा था प्यार हम ना करेंगे, ब्लफ मास्टर है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से आप सुनेंगे।

सोचा था प्यार हम ना करेंगे, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी ब्लफ मास्टर से हमने पेश किए हैं द माइटी मुकेश जी की आवाज में, लता जी के साथ में मुकेश जी प्रोग्राम में आ रहे हैं और गीत का बोल है दुनिया वालों से दूर चलने वालों से दूर आजा आजा चले कहीं दूर, उजाला है फिल्म का नाम।

अभी आप सुन रहे थे दुनिया वालों से दूर, चलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर कहीं दूर कहीं दूर। जिस दिन से मैंने तुमको देखा है, इस दिल में क्या हुआ है, एक सपना सा जागा है। मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं, फ्रॉम द मूवी परवाना से आप सुनेंगे।

जिस दिन से मैंने तुमको देखा है उस दिन में एक सपना सा जागा है। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी परवाना से हमने पेश किए हैं मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे। मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ और वो ये है कि ज़मीन वाले मायूस कर सकते हैं, ज़मीन वाले मायूस कर सकते हैं मगर आसमां वाला नहीं। चल मेरे दिल लहरा के चल।

चल मेरे दिल लहरा के चल, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी इशारा से। अभी आप सुन रहे थे द माइटी मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। मस्ती भरा है समा, हम तुम्हें दोनों यहाँ। फ्रॉम द मूवी परवरिश से हम पेश करते हैं लता जी के साथ में मन्ना दे जी प्रोग्राम में आ रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे मस्ती भरा है समा, हम तुम हैं दोनों यहाँ। मन्ना दे जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले थे। कोई कोई आदमी दीवाना होता है, फ्रॉम द मूवी स्वीट हार्ट से हम पेश करेंगे द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये है कि कदर वो होती है जो किसी के होते हुए हो, कदर वो होती है जो किसी के होते हुए हो, और जो किसी के जाने के बाद होता है वो पछतावा होता है।

द माइटी मुकेश जी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे कोई कोई आदमी दीवाना होता है। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा नेक हम सफर है। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा नेक हम सफर है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है, जो सिर्फ खुशी का मोल करे वो दोस्त नहीं सौदागर है। फ्रॉम द मूवी मधुमती से आप सुनेंगे

जो सिर्फ किसी का मोलक यानी जो सिर्फ खुशी का मोलक करे वो दोस्त नहीं सौदागर है। नमाइती मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी मधु मालती। जिंदगी की सबसे बड़ी हार किसी की आंखों में आंसू आपकी वजह से, और जिंदगी में यानी जिंदगी की सबसे बड़ी हार किसी की आंखों में आंसू आपकी वजह से, और जिंदगी की सबसे बड़ी जीत किसी की आंखों में आंसू आपके लिए।

द माइटी मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी सोता यानी सोसाइटी से, दिल मेरे तू अकेला था तू अकेला है। मुस्कुराहटें झूठी भी हुआ करती है जनाब, मुस्कुराहटें भी झूठी हुआ करती है जनाब, इंसान को देखना नहीं समझना सीखो। मोहम्मद रफ़ी आपको सुनाने वाले हैं ओ मेरे शाह हुआ।

अभी आप सुन रहे थे ओ मेरे शाह खुबा ओ मेरी जाने जनाना, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। जाने मन तुम कमाल करते हो, फ्रॉम द मूवी त्रिशूल से हम पेश करते हैं, चलिए मिलकर सुनते हैं।

ये आप सुनते यानी सुने हैं जाने मन तुम कमाल करते हो। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह।

मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह भी आप सुन रहे थे। किशोरदा और लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी कर्ज से। आप सुनेंगे मैं 16 बरस की, तुम 17 बरस का।